0: जहाँ रखना हो गरम या ठंडा, रिलायंस वेंटिलेशन का हाजिर हो जाएगा बंदा। कॉल अस नाउ फॉर अ फ्री कोट ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन मेक्स
1: हैप्पी हेल्दी होम्स। बिफोर यू टर्न अप द हीटिंग दिस विंटर, इट्स वर्थ चेकिंग योर होम इज सेट अप वेल। बाय क्लीनिंग योर हीट पंप फिल्टर, सीलिंग ड्राफ्ट्स एंड रिड्यूसिंग डैम्पनेस, यू कैन कीप द हीट इन एंड योर एनर्जी बिल डाउन। Search ECA, that's EECA, get winter ready.
2: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: You are tuned into Radio Tarana.

हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून लिसनर्स. कैसे हैं आप सब? आजकल आप हमें बड़ा ध्यान से सुनते हैं, बिकॉज आपके मैसेजेस जो मेरे पास आते हैं. थैंक यू सो मच अपने मैसेजेस को भेजने के लिए. कभी कभी समय रहते उसी दिन मैं आपको नहीं याद कर पाती हूँ या नहीं शामिल कर पाती हूँ. ये इतना छोटा सा सेगमेंट है, मुझे उतना ही मौका मिलता है कि मैं आऊँ, आपसे बातें करूं, अच्छे गाने बजाऊं, बॉलीवुड के ही बातें करूं. एंड जैसे ही मैं निकलती हूं, मेरा फोन साइलेंट पर होता है, फिर मैं देखती हूं आपके मैसेजेस आते हैं. बट थैंक यू सो मच, आप हमें याद करते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं. आज फिर 90s के दशक के खूबसूरत खुशनुमा फूल तोड़ तोड़ कर हम आपके लिए पेश करेंगे. सबसे पहले ये गाना हो जाए, इतना प्यारा मुझे लगता है ये लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज. आई जस्ट लव इट. केम छो मजा माँ.

0: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
1: सुनते हो, घर बनाना स्टार्ट करना है पर मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है बजट और डिलेज की।
2: हाँ, इसीलिए सही बिल्डर चूज करना बहुत जरूरी है।
1: पर कौन? सब लोग तो अलग अलग बताते हैं।
2: मैंने KMB कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत सुना है, वो घर बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर कंप्लीट कर देते हैं।
1: सच?
2: हाँ, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ओकलैंड में, और जो काम लेते हैं कॉम्प्लीट करके ही देते हैं। चलो भूपेंद्र कुमार को कॉल कर लेते हैं 021-874-871 पर, kmbconstruction.co.nz पर देख भी लेते हैं।
3: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: Bunnings gift card is a great gift for Mother's Day because it unlocks the whole warehouse for Mum. She's in for a treat. She'd be like, oh my gosh, yes, now I can buy all those extra plants that I was looking for the front garden. Perfect. Bunnings
5: Warehouse. मैंने सोचा कि मैंने आपको टॉप हीरोज के बारे में बताया है, उसमें अक्षय रह गए थे, उनके बारे में हम आज कुछ बातें करेंगे। अक्षय कुमार की मूवी कंट्रीब्यूशन जो थी वो क्या थी, मैंने गूगल से पूछ ही लिया सीव आउट अक्षय 1990 मूवीज, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे जो लिस्टिंग्स है वो दिए मूवीज के। और 1990s में सबसे पहली फिल्म उनकी आई थी सौगंध, जो 1991 में रिलीज हुई थी। उसके बाद 1990s में इनका करियर जो है बिल्कुल परवान ही चढ़ गया। खिलाड़ी आई 1992 में, जिसने रूप रेखा ही बदल कर रख दी। फिर 1992 में करिश्मा कपूर के साथ इनकी रोमांटिक ड्रामा मूवी रिलीज हुई, जिसमें इन्होंने अपना जो एक रोमांटिक साइड ऑफ हीरो उसकी झलक दी, फिल्म दीदार। फिर 1994 में इनकी एक नोटेबल मूवी आई मोहरा।

0: क्यों थोड़ा म्यूजिक कम करो। अरे अरे अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
1: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
0: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
1: प्यारा मंडप तो है पर खर्चा बड़ा किया होगा।
0: अरे नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एनजेड मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
2: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एनजेड मंडप फेसबुक पेज।
0: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्कीज पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
3: इंडेलेबल होम्स आर स्पेशलाइज्ड इन बिल्डिंग हाई क्वालिटी स्टैंडअलोन एंड टेरेस्ड हाउसेस एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस। प्लीज सेंड योर आरसीबीसी ड्रॉइंग्स एंड दे विल बिल्ड फॉर यू। विजिट indeleblehomes.co.nz or call 0800-233-111. That's 0800-233-111.
4: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
5: Radio Tarana, ka hai ye plan? बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
0: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन, रेडियो तराना।

0: Call Ajeshni today on 02196-1386 for sales on Tarrana. So yaad rakhna, number ghumana, 02196-1386 for advertising on Radio Tarrana.
1: अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर थे जो बहुत मेहनत पर भरोसा करते थे. इस मेहनत पर भरोसा करके इन्होंने 1999 में मूवी जानवर साइन की थी, जिसमें ना एक एक्शन हीरो थे ना एक रोमांटिक हीरो थे, बट एक इमोशनल हीरो थे. इन्होंने कहा, इस मूवी को मैंने साइन किया था बहुत दिमाग पर जोर लगाकर, एंड ये मूवी अव्वल हुई. इससे पहले 1995 में सबसे बड़ा खिलाड़ी, इन्होंने कहा इसको मैंने दो तीन फ्लॉप्स के बाद ये मूवी ऐसे ही हिट हो गई. मुझे इस मूवी से बहुत उम्मीद नहीं थी, बट ये मूवी जैसे ही रिलीज हुई, मूवी ने कमाल कर दिया. 1994 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी आई थी, जिस पर इनकी बहुत उम्मीद थी और ये मूवी कुछ हद तक खरी उतरी थी. मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में इन्होंने डबल मेहनत की थी. इन्होंने कहा इसमें मैंने अपने डाइट को, अपने एक्सरसाइज को डबल एफर्ट लगाकर किया था. एंड जब मूवी आई तो मेरे एक्सपेक्टेशन से कुछ कम ही निकली.

0: आपको पसंद तो आ रहा है ना, एक के बाद एक सुपरहिट गाने आपको सुना रही है 90s की रानी संगीता।
1: या अक्षय कुमार जिन्होंने बहुत मेहनत की है मूवीज में आने के लिए, मूवीज में 1990s में। इन्होंने कहा कि कभी कभी जो लेडी लक होता है ये हीरोज के साथ होता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मेहनत की बात थी एंड मैंने बहुत हार्डवर्क किया है और 90s ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। 1990s के एक और ये बहुत ही नोटेबल हीरो रहे थे जिन्होंने अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं। सो या टाइम टू गो, कल मिलती हूँ। यू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करें।

0: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
1: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
2: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर
3: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल प्रोजेक्ट
2: ये होगा संडे 17th मई को 11 AM टू 4 PM
3: 378 आरारीमू रोड रामा साउथ ऑकलैंड में एंट्री फ्री है फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स हेना आर्टिस्ट फेस पेंटिंग बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ
2: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर
3: वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग
4: हम चाहे हंसी का नकाब गम पर लगाएं या गम का नकाब हंसी पर या हजार बार समझाएं माँ सच्ची कुछ नहीं हुआ है अच्छा बेटा फिर मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है इन्हें कही अनकही हर बात का अंदाजा होता है माँ को सब पता होता है
5: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे
6: This is Tarana News.
7: समाचार सुनिए संजेश नारायण से देश के सबसे बड़े सोलर फार्म का निर्माण कार्य शुरू हो गया है जो अटाउपो और नेपिया के बीच में बनाया जा रहा है टेरा हुई सोलर फार्म को स्टेट हाईवे 5 के समीप बनाया जाएगा ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट नोवा एनर्जी और मेरिडियन एनर्जी का है इस सोलर फार्म को 800 हेक्टर फार्मलैंड पर तैयार किया जा रहा है ये फार्मलैंड टाउपो से आधे घंटे की दूरी पर है तथा इस प्रोजेक्ट को दो स्टेजेस में पूरा किया जाएगा सोलर फार्म में 7,700,000 सोलर पैनल्स फिट किए जाएंगे इसकी मदद से 1,100,000 घरों में बिजली सप्लाई की जा सकेगी कैंटरबरी से लेकर तारानाकी के बीच में 6 ऑरेंज हेवी रेन वार्निंग दी जा रही है ये चेतावनी शनिवार की सुबह तक के लिए लागू है तारानाकी वेलिंगटन और मार्लबोरो सहित कैंटरबरी के लिए ऑरेंज स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग भी दी जा रही है जहां पर झोंकों के साथ में 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल सकती है हेवी रेन वार्निंग टेस्मन ब्यूला वेस्टलैंड और कैंटरबरी सहित ओटागो के लिए लागू है मौसम दफ्तर के मुताबिक देश के सेंट्रल और सदर्न इलाके में 30 घंटे तक बारिश होगी तथा मेट सर्विस ने तारानाकी और आसपास के इलाकों के लिए 16 अलर्ट्स जारी किए हैं लेबर पार्टी की डेप्यूटी लीडर कमल सेपोलोनी का कहना है कि ऑकलैंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर जाने के लिए लेबर पार्टी जिम्मेदार नहीं है रेडियो तराना से बातें करते हुए लेबर पार्टी की डेप्यूटी लीडर कमल सेपोलोनी ने कहा कि इसके लिए कॉलिशन सरकार जिम्मेदार है क्योंकि कॉलिशन सरकार के नेतृत्व में ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में धीमापन आया है जिससे 20,000 लोगों की नौकरी चली गई है
8: The cancelling of infrastructure and building projects that were already underway, that's resulted in 20,000 fewer jobs in the construction industry, which has played a big part in the increase in unemployment that we're seeing, particularly in a region like Auckland. We were promised before the last election that the cost of living would improve, that New Zealanders would be better off. They are not better off. And in fact, overall, we've got 40,000 fewer Kiwis in work under this government, which is a real indication of the fact that the country is going backwards.
7: Auckland mein pichle 12 saalon mein unemployment rate sabse zyada 6.6% record hua hai. कोलकाता के पास सुवेंदु अधिकारी अक्के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड में सुवेंदु अधिकारी के पीएस भी घायल हुए हैं। घटना के बाद से ही स्थानीय पुलिस हमलावरों की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में हमलावरों की कार और बाइक बरामद कर ली है। इस हत्याकांड को लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी का भी पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने इस हत्याकांड को एक सोची समझी हत्या बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां से गुंडों को खत्म करेगी। नेशनल फार्मर्स यूनियन ने गन्ने के ढुवाई के लिए रेल लाइन सर्विस को बंद कर देने वाले फैसले पर सवाल उठाया है। फिजी शुगर कॉरपोरेशन के अनाउंसमेंट के मुताबिक तापुआ से मबा के बीच में रेल लाइन सर्विस को बंद किया जा रहा है। रेल लाइन सर्विस को बंद करने के लिए एक एप्लीकेशन शुगर इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल के पास में भेजा गया है। इस बीच गन्ने के किसानों ने प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को लेकर के गहरी चिंता व्यक्त की है। नेशनल फार्मर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी महेंद्र चौधरी का कहना है कि इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि अभी हाल में सरकार ने अनाउंस की थी कि रेल लाइन सर्विस की मरम्मत की जाएगी। चौधरी का कहना है कि अभी हाल में FSC ने $1.7 million का ग्रांट रेल मेंटेनेंस वर्क के लिए दिया था तथा इस पर काम पिछले साल सितंबर में खत्म हुआ है। NFU का कहना है कि शुगर केन ग्रोस काउंसिल भी रेल लाइन सेवा को बंद करने के खिलाफ है।
6: स्पोर्ट्स न्यूज।
7: क्रुसेडर्स रग्बी टीम के पूर्व खिलाड़ी और न्यूजीलैंड रग्बी के इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद पिछले 6 महीनों से संभालने वाले स्टीव लैंकेस्टर को प्रमुख रूप से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। लैंकेस्टर साल 2020 से न्यूजीलैंड रग्बी एग्जीक्यूटिव टीम में है तथा पिछले 6 महीनों से वे इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भूमिका निभा रहे थे। न्यूजीलैंड रग्बी के चेयरपर्सन डेविड खेक ने पुष्टि की है कि स्टीव लैंकेस्टर को न्यूजीलैंड रग्बी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। वे पिछले 20 सालों से स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड रग्बी सहित क्रुसेडर्स रग्बी कनाडा और नेटबॉल न्यूजीलैंड के साथ में भी काम किया है।
9: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से। और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 अररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
10: बोर्ड
11: उदास हो
10: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज
11: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज
10: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ आपका साथी बरसों पुराना
11: चलो समेटो खुशियों का खजाना
10: ओनली ऑन।

0: नौकरी से पहले दोपहर में करे थोड़ा चिल विद नेहा
1: मंडे टू सैटरडे 1 PM to 4 PM ऑन रेडियो तराना.
2: रेडियो तराना सुन रहे हैं आप और मैं हूँ नेहा आपके साथ इन द शो चिल विद नेहा. स्वागत करती हूँ आप सभी का आज गुरुवार की दोपहर के इस प्रोग्राम में. हैप्पी थर्सडे एवरीवन. चिल करने वाले हैं आज भी हम कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे गानों के साथ और कुछ आर्टिस्ट के चुनिंदा गाने मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ स्टार्टिंग विद दिस आवर जिसमें आज हमारे शो में छाए रहेंगे कैलाश खेर साहब.

0: हो कल फिर आएगा। बड़ा प्यारा गाना है ये ना, बड़ा एक हैप्पी सी फीलिंग अंदर जगा देता है। अगर आप कभी लो फील कर रहे हो, इस गाने को सुनो, जस्ट गिव्स यू सो मच मोटिवेशन। ब्यूटीफुल सॉन्ग। कैलाश खेर की आवाज़ में ये ट्रैक अभी आपने इंजॉय किया मेरे प्रोग्राम में, और आज इस आवर में कैलाश खेर के और भी सुंदर सुंदर गाने मैं आपको सुनाती जाऊंगी। क्यों आज मैंने कैलाश खेर साहब के गाने चुने हैं? कैलाश खेर साहब को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत साल पहले इनसे मिली थी, जो शुरुआती दिनों में जब मैंने अभी रेडियो में काम शुरू ही किया था, तो उस समय पर जो एक आर्टिस्ट से मुझे मिलने का मौका, क्लोजली इंटरेक्ट करने का मौका और जिनका शो होस्ट करने का मौका मिला था, वो कैलाश खेर ही थे। और उस समय पर ये भी अपने करियर में नए नए आए थे, तो यू नो जब होता है आप नए नए अपने करियर में होते हो तो उतना एटीट्यूड नहीं होता, बड़े हम्बल तरीके से, वैसे बाद में भी चलकर लोग हम्बल रहते हैं, बट शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे हम नॉर्मल लोग एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, तो उस तरह का एटीट्यूड था कैलाश साहब का। तो हम सब बैठ कर बातें बातें कर रहे थे, तो उन दिनों में मैंने उनसे जिक्र किया था आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कि मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को मानती हूँ, उन्हें फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने भी बड़ा रहे वाह अच्छी बात है अच्छी बात है। फिर वो यहाँ से जब चले गए वापस इंडिया, तब भी वी स्टेड इन टच, कभी कभी उनका मैसेज आता था। तो एक दिन उनका मैसेज आया कि अभी हम आप ही के गुरुजी के साथ बैठे हुए हैं यहाँ मुंबई में, उनका प्रोग्राम चल रहा है। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, दैट्स नाइस टू नो, एंड सो नाइस टू नो कि आपने वहाँ से मुझे याद किया और मुझे मैसेज भेजा ये स्पेशली बताने के लिए कि हम आपके गुरुदेव के साथ बैठे हुए हैं। अब इस बात को हो गए होंगे कुछ 20 साल, वाह टाइम फ्लाइज, हाँ 20 साल पुरानी ये बात है। 20 साल बाद अभी मैंने आज सुबह ही एक रील देखी कि आजकल कैलाश खेर जी पहुँचे हुए हैं आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में बैंगलोर में, और गुरुदेव के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कुछ बड़े मज़ेदार उनके क्लिपिंग्स आए, और एक क्लिपिंग में वो कह रहे हैं कि ये तो जीते जागते तीरथ हैं, कि इनके दर्शन हो गए तो मानो एक तीरथ यात्रा पूरी हो गई। तो वो देखकर मुझे बड़ी खुशी मिली, और कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि चलो देखो 20 साल पहले जो हमने बातें की थी, इंटरेक्ट किया था, मैंने उन्हें गुरुदेव से उनके बारे में बताकर इंटरव्यूज़ किया था, और उन्होंने कहा उनका भी एक इंटरेस्ट हमेशा इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी में रहा है, तो समवेयर डाउन द लाइन जर्नी में वो आगे उनका इंटरेस्ट बढ़ता रहा और अब उस मकाम पर वो हैं जहाँ वो आश्रम में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड ही इज थरली इंजॉइंग हिमसेल्फ। तो मुझे बड़ी खुशी मिली ये रील देखकर, और उसी के बाद मैंने सोचा कि चलो यार आज कैलाश खेर जी के गाने सुने जाएँ, इंजॉय किए जाएँ, इतने सारे अच्छे अच्छे गाने हैं, तो मज़ा आएगा आज की दोपहर। और मज़ा आ रहा है कि मेरे लिसनर्स मेरा साथ दे रहे हैं, ऑफ कोर्स एज ऑलवेज हमारे नंबर वन लिसनर अजय, हर रोज सबसे पहले इनका मैसेज .1 PM मेरे पास पहुंच जाता है। मेलबर्न में आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपने बताया कि आज वहां पर मौसम भीगा भीगा है, बारिश है, वेल लुक आफ्टर योर सेल्फ अजय, वी आर टचवुड वी आर वेरी लकी कि यहाँ पर आज भी और पिछले कई दिनों से लगातार हमें बहुत अच्छी धूप मिल रही है, बहुत अच्छी। कल थोड़ी बारिश थी बट फिर वेदर क्लियर हो गया था, और आज तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मौसम है। तो इस ब्यूटीफुल मौसम में आगे और भी ब्यूटीफुल गाने एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले लेते हैं छोटी सी एड ब्रेक।
1: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds, and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at iFurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton, and Christchurch. iFurniture. Better, cheaper, smarter.
2: Drawing inspiration from urban communities around the world.
3: We present Pick O Toy Toy, a brand new urban development in Papatoetoe. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
2: 5 minutes from New World. Eateries, schools, City Rail Link, Pohinui Bus Interchange, and major motorways.
3: Join the new community. Selling now. Find out more at pickotoetoe.nz.
2: That's PIKOTOETOE.NZ.
4: Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free. Quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it.
5: राजस्थान की मेहमान नवाजी के तो क्या कहने, और अब वही मेहमान नवाजी और वही स्वाद आपको मिलेगा यहाँ ऑकलैंड में एट श्री रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक राजस्थानी एंड

केटरिंग थी, एंड आई वुड से कि जितना लोगों ने भजन एंजॉय किया उतना ही भोजन भी एंजॉय किया। ऐसे टूट कर सब स्टॉल पर पड़े कि यार हमें खाना दे दो, इतना मजेदार है, इतना डिलिशियस और इतना चीप। आई मीन इडली प्लेट $5, ब्रेड पकौड़ा प्लेट $5, समोसा प्लेट $5। आजकल कहाँ यार $5 में आइटम्स मिलते हैं, सब कुछ मिनिमम $7-$8 से स्टार्टिंग हो गया है प्राइस, बट वेरी रीजनेबली प्राइज्ड स्टफ एंड वेरी गुड, वेरी टेस्टी। मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा पर्सनली ब्रेड पकौड़ा और जलेबी एकदम सुपर हिट लगे थे इनके। भजन क्लबिंग इवेंट में हम भजन के साथ साथ भोजन भी इंजॉय कर रहे थे फ्रॉम श्री रेस्टोरेंट। तो इनकी टीम को भी याद करते चलते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच हमारे केटरिंग स्पॉन्सर्स के रूप में आने के लिए सामने और हमारे सपोर्ट करने के लिए। एंड बहुत सारे लोगों ने इनका खाना पहली बार ट्राई किया जो इस साइड रहते हैं, और अब वो कहते हैं कि हम भी उस साइड यानी मनिकाओ साइड स्पेशली जाएंगे क्योंकि खाना इतना बढ़िया है श्री रेस्टोरेंट का। तो खाना भी आप इंजॉय करते रहें और गाना भी इंजॉय करते रहें। गानों की बात चली तो इस बार के अलाश खेर साहब का ये गाना।

इस गाने का एक वर्जन आतिफ असलम ने भी गाया है, पर ये रिप्राइज्ड वर्जन आज मैंने आपके लिए प्ले किया कैलाश खेर की आवाज में। कैसा लगा? अमेजिंग ना।

0: वाओ, एब्सोल्युटली वाओ। और ये मैजिक आप भी महसूस कर रहे हैं और इन गीतों में, इन गानों में कहीं डूबे हुए हैं, ये जानकर मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है जब आपके मैसेजेस इस तरह से आते हैं। जैसे अभी आयशा ने मेरे पास टेक्स्ट भेजा कि लवली प्रोग्राम, रियली इंजॉइंग द प्लेलिस्ट टुडे। थैंक यू सो मच आयशा फॉर योर मैसेज। रमला बहन आप भी प्रोग्राम इंजॉय कर रही हैं, आपने लिखा फाइनली नाइस टू बी बैक होम आफ्टर 5 वीक्स। क्या बात है, 5 वीक्स पूरा न्यूजीलैंड घूमी आप वापस वेलिंगटन पहुंच गई हैं एंड इंजॉइंग द प्रोग्राम फ्रॉम होम टुडे, सो नाइस टू नो दैट। रमिला जी आपका भी शो में स्वागत है। अगर आप भी शो के दौरान मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, फील फ्री टू सेंड मी अ टेक्स्ट और अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन 021-222-1386। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आगे और भी कैलाश खेर हिट्स आपके लिए ऑल दिस आवर ऑन रेडियो तराना।
1: कानून तोड़ दिया, अब तो तू बेटा क्रिमिनल हो गया।
2: तुम पे बहुत तरस आता है यार, पर पुलिस का मामला है तो।
1: डरो मत, गलती कभी कभी हो ही जाती है और कानूनी गलती हो जाने पर एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। गुल्ला लीगल सर्विसेज फाउंडर मिस्टर गुल के पास लॉ के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस है। वो आपको सलाह ही नहीं देंगे बल्कि आपकी सिचुएशन को समझेंगे भी। कॉल टुडे ऑन 022-353-0872 और विजिट gullaw.co.nz।
0: सैटरडे 9th मई को रेडियो तराना की टीम आपको शॉपिंग करवाने वाली है इन NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर, और एक्सक्लूसिवली उस वीकेंड इन स्टोर डील्स के अलावा यू विल रिसीव अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड ऑफ एनी बेड। ट्रेड इन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और आपको फ्री लोकल डिलीवरी भी मिल सकती है। टीज एंड सीज अप्लाई। NZ Beds विद 40 इयर्स इन बिजनेस एंड थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी कस्टमर्स, ये आपको देंगे गारंटीड बेस्ट प्राइस। और 9th मई को मिलते हैं इनके मानिका सुपर सेंटर वाले स्टोर में एट द कॉर्नर ऑफ लैम्बी ड्राइव एंड कैवेंडिश ड्राइव। आशिक होम्स लिमिटेड, for the first time rent to buy, fantastic opportunity to own a brand new home. If you have Kiwi Saver and some debt, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue, finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz.
3: Farmers has the best gifts for mum. Surprise her with a new fragrance or beauty gift. Keep her cozy with a new robe and sleepwear. Treat her with some new styling tools or a gorgeous diffuser or candle. Celebrate mum this Mother's Day. Farmers, your department store.
4: ऐसी लागी

0: हेलो रेडियो तराना सुनने वाले सभी श्रोताओं को कैलाश खेर का प्यार भरा नमस्कार।
1: यार मुझे फीजी जाना था।
2: कब जाना है?
1: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
2: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
1: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
2: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
3: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965202228।
2: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
4: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
5: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
6: रेडियो तराना का है ये प्लान, बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
7: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन रेडियो तराना।

0: माँ।
1: हाँ मेरे लाल।
0: खुश हो ना माँ?
1: बहुत मेरे पुत्र।
0: नागर अच्छा है ना माँ?
1: बहुत वधिया है पुत्र।
0: आशीर्वाद दो ना माँ।
1: हमेशा खुश रहे, चढ़दिया कलावाच रहे हैं मेरे पुत्र।
0: गालियाँ तो वैसे ही देती रहती है माँ।
1: चुप फिट्टे मुँह तेरे। ओते मेरा प्यार है मेरे बच्चे।
2: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111।
3: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक। और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई। पापा टोए फ्लैट बुश और पापाकुरा के बाद अब DH सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन। दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन। ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग। यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में। DH Supermarket now in Henderson at 5 Moselle Avenue off Lincoln Road.
4: Shamal Savare main paru paavre.
5: Chahe wo manushya ho ya manushya ke roop mein swayam avtar.
2: Mohana dekhiye ek kahani prem ki, ek kahani kartavya ki, Krishna avtaram.
6: Acha ho kana, tum kahe to prem chala jayega. माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं।
3: कृष्णा अवतारम पार्ट वन हृदयम इन सिनेमास फ्रॉम 7th मई प्राउडली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फोरम फिल्म्स।
7: बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है ये फिल्म, आज से सिनेमाज में लग रही है एंड वुड लव टू गो एंड वॉच दिस वन ऑन द बिग स्क्रीन्स। आई एम श्योर आप भी एक्साइटेड होंगे टू वॉच कृष्णा अवतारम ऑन द बिग स्क्रीन्स। आज से ये फिल्म सिनेमाज में है प्राउडली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फोरम फिल्म्स। ओके, कैलाश खेर साहब के गानों से सजा हुआ ये आवर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बस दो और गाने प्लेलिस्ट में अब मैं फिट कर पाऊंगी।

0: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए. फ्लाई विद एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया, और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ. तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे.
1: बच्चों बताओ, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम.
1: जीनियस. अब बताओ, रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान.
0: बच्चा बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान. फोन 09255500. टीज एंड सीज अप्लाई.
3: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
0: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड. सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर.
4: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन.
1: ब्रॉट टू यू बाय कैंडी कंस्ट्रक्शन. नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर.
0: भूपेंद्र कुमार जी एंड इनकी टीम की ओर से भी आप सभी को हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस. एंड यस, घर को घर बनाती है माँ, पर घर का स्ट्रक्चर आपको सही तरह से बनाकर दे सकते हैं KMB कंस्ट्रक्शन. सो इनके साथ आप भी बिल्ड करें अपना घर. कॉन्टैक्ट करें इन्हें ऑन 021-874-871. इनकी तरफ से मैंने सोचा अभी हमारे स्टार ऑफ द वीक वाले सेगमेंट में हमारे स्टार ऑफ द वीक संगीतकार जो हैं उनकी उनके किसी गाने की जगह मैं एक मदर्स डे का गाना प्ले कर दूँ, क्योंकि वो हमारे सावर की थीम को ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि ये गाना कैलाश खेर की ही आवाज़ में है, जिनके गाने इस पूरे आवर में मैंने आपको सुनाए. सो ये मदर्स डे सॉन्ग, इसके बाद एक प्यारी सी मदर्स डे पोइट्री एंजॉय करेंगे, देन 2 PM न्यूज़ ऑन तराना.

0: माँ को सब पता होता है, हमारे दिल और दिमाग का नक्शा इनके जहन में छपा होता है। शायद इसीलिए हमारी खबर हमसे ज्यादा इन्हें होती है। हाँ, कभी खिटपिट भी होती है, डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा मीठा तो कभी कड़वा भी बोल देती है। फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने लाकर खाने की थाली रख देती है। इनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है, माँ को सब पता होता है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: रेडियो तराना, टाइम चेक।
3: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
4: Good afternoon. तराना के स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के दो बज चुके हैं।
5: This is तराना News.
6: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। पुलिस मंत्री मार्क मिचेल और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने एक महिला से उसके फेसबुक पोस्ट को लेकर के क्यों बात की। रिनी रोज स्वेंके ने पिछले महीने के अंत में एक सेल्फी पोस्ट की थी जो किसी सार्वजनिक स्थान पर ली गई प्रतीत होती है। उनके बाएं ओर भारतीय दिखने वाले दो पुरुष हैं, जिन्हें शायद इस बात का एहसास ही नहीं है कि फोटो खींची जा रही है। स्वेंके के पोस्ट का कैप्शन है, लक्ष्य सिंह की बदौलत नए भारत में आपका स्वागत है, जो संभवतः न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच हुए फ्री ट्रेड डील और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का संदर्भ है। स्वेंके ने इस महीने की शुरुआत में एक अन्य पोस्ट में बताया कि पुलिस ने उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन बुलाया, जहां एक वरिष्ठ सर्जन ने उनके शब्दों में कहा कि उनका पोस्ट भारतीय समुदाय के लिए अपमानजनक था। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए लिखा था कि जब आप नाराज लोगों के नरम अत्याचार के अधीन रहते हैं तो क्या होता है। नए सिटीजनशिप टेस्ट के तहत एप्लीकेंट्स को टेस्ट पास करने के लिए 6 मौके दिए जाएंगे तथा पास रेट 75% रखा जाएगा। इंटरनल अफेयर्स की ओर से जो टेंडर जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि दो पीरियड्स जो कि 30 वर्किंग डेज के अंदर होंगे में एप्लीकेंट्स को सिटीजनशिप टेस्ट पास करने के लिए 6 मौके दिए जाएंगे। अगर छठी बार भी व्यक्ति फेल हो जाते हैं तो उनके लिए कुछ विकल्प होंगे, जिनमें एक तो ये होगा कि वे अपने सिटीजनशिप एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकेंगे या फिर वे चाहेंगे कि मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स उनकी अर्जी पर गौर करे। यह टेस्ट 45 मिनट्स का होगा तथा 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अभी फीस तय नहीं किया गया है, लेकिन जो टेंडर जारी किया गया है उसके मुताबिक हर एक कैंडिडेट को $24 इस टेस्ट के लिए भरना होगा। अंडर 16 और ओवर 65 को इस एग्जाम से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, यानी कि उन्हें ये एग्जाम नहीं करना पड़ेगा। मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स ब्रूक वैन वेल्डन का कहना है कि वह चाहेंगी कि जो कंपनी ये टेस्ट करवाती है वो ये देखे कि कोई चीट ना करे। इसके साथ ही नए नियम लागू होने से पहले जो लोग सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर देंगे उन पर ये नया नियम लागू नहीं होगा। लेबर पार्टी के डेप्यूटी लीडर कामिल सेपोलोनी ने न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी सांसद शेन जोन्स के बटर चिकन सुनामी वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि यह नस्लवादी टिप्पणी है तथा इसे देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील को लेकर के शेन जोन्स का यह बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अब देश में बटर चिकन सुनामी देखने को मिलेगा।
7: It is, and it's a type of scaremongering that goes back many, many decades. You know, that type of scaremongering where you imply to New Zealanders that people are going to come from overseas and take the jobs away from the New Zealanders that need it. Actually, we have been reliant for a number of decades on people coming from overseas and filling the skills gaps and helping us to grow the economy and doing the work where we haven't got the workers to do it. And so that type of scaremongering is unacceptable.
6: वेस्ट ऑकलैंड के रानुई में जिस वृद्ध व्यक्ति पर चाकू से वार किया गया था उन्हें पता ही नहीं चला कि उन पर वार किया गया है। 70 वर्षीय व्यक्ति के बेटे जिन्होंने अपनी पहचान मीडिया में सिर्फ सोहेब के नाम से दी है का कहना है कि उन्हें लगा कि कोई उन्हें छू कर गया है, लेकिन जब पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने किसी को वहां से भागते हुए देखा है तब उन्होंने अपने जैकेट के अंदर देखा तो उनके शर्ट में खून लगा हुआ था। 70 वर्षीय व्यक्ति का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। वेस्ट ऑकलैंड में दो अलग अलग स्टैबिंग वाली घटनाओं में 23 वर्षीय एक महिला सहित 29 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कैलम मैकनील का कहना है कि स्टेबिंग वाली एक घटना के बाद में पीड़ित व्यक्ति को वे स्वानसन रोड पर मेडिकल सेंटर लेकर गए थे। उसे स्टेबिंग वाली घटना के संबंध में 23 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया है। जब पुलिस पीड़ित व्यक्ति को लेकर के मेडिकल सेंटर के अंदर थी तो पुलिस को जानकारी मिली थी कि किसी के सर पर चाकू से वार किया गया है। दोनों पुलिस ऑफिसर जब बाहर जाँच करने के लिए गए तो 29 वर्षीय व्यक्ति ने एक पुलिस ऑफिसर को धकेला था और वहाँ से भागते हुए उन्होंने 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति को चाकू मारा जो मॉस्क में नमाज के बाद में रानुई फार्मेसी की ओर जा रहे थे। उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन डेवलपमेंट बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान हुई उच्च स्तरीय चर्चाओं के बाद में फिजी ने आगामी राष्ट्रीय बजट में मौजूदा फ्यूल संकट से निपटने के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर्स की कॉन्सेशनल फाइनेंस एशियन डेवलपमेंट बैंक से हासिल की है। वित्त मंत्री एस्ट्रोम इमैनुअल और फिजी रिजर्व बैंक के गवर्नर आरिफ अली ने उज्बेकिस्तान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंधन से मुलाकात की। फाइनेंस मंत्रालय का कहना है कि 200 मिलियन डॉलर्स का जो कॉन्सेशनल फाइनेंस लिया जा रहा है इसका विवरण तैयार किया जा रहा है।
5: स्पोर्ट्स न्यूज।
6: चैंपियंस लीग के डिफेंडिंग चैंपियंस पेरिस सेंट जर्मेन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख के होम ग्राउंड में उसके साथ में मैच 1-1 गोल से बराबर खेलने और 6-5 एग्रीगेट के साथ में पेरिस सेंट जर्मेन ने चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली है। फाइनल में उसका सामना आर्सेनल से होगा। पेरिस सेंट जर्मेन की ओर से बैलन द'ओर विनर ओसमाने डेम्बेले ने 3rd मिनट में ही गोल स्कोर कर दिया था जबकि बायर्न म्यूनिख की ओर से इंजरी टाइम में हैरी केन ने गोल बनाया था जो कि टीम को चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचाने के लिए काफी नहीं था।
8: बोर्ड
9: उदास हो
8: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज
9: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज
8: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ आपका साथी बरसों पुराना
9: चलो समेटो खुशियों का खजाना
8: ओनली ऑन

जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरोल कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09815381111। डी कैरोल कर्टन्स।

0: घर रखना हो गर्म या ठंडा, रिलायंस वेंटिलेशन का हाजिर हो जाएगा बंदा। कॉल अस नाउ फॉर अ फ्री कोट ऑन 0800 787 111। रिलायंस वेंटिलेशन मेक्स
1: हैप्पी हेल्दी होम्स। न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनगाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505। और सुनिए, ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505।
2: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर।
3: सुबह की जद्दोजहद के बाद और शाम की अफरा तफरी से पहले दोपहर में करे थोड़ा चिल, चिल, चिल, चिल, चिल विद मी नेहा।
4: चिल विद नेहा मंडे टू सैटरडे 1 PM to 4 PM ऑन रेडियो तराना।
2: चिल कर रहे हैं आप रेडियो तराना पर मेरे नेहा के साथ में। बिग हाय हेलो गुड आफ्टरनून लिसनर्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज थर्सडे आफ्टरनून के शो में। हैप्पी थर्सडे। लास्ट आवर में कैलाश खेर की आवाज़ का जादू छाया रहा और सच बताऊं पता ही नहीं लगा कैसे पूरा आवर निकल गया, एक से बढ़कर एक गाने और उन गानों में हम सभी कहीं खो गए। अब एक और ऐसे आर्टिस्ट को मैंने पिक किया है जिनकी आवाज़ में भी जो डेप्थ है ना, मतलब एक अलग ही टेक्सचर इनकी आवाज़ का रहा है। एक ऐसी आवाज़ जो रॉक सॉन्ग्स, रॉक स्टाइल के, पॉप स्टाइल के सॉन्ग्स, रोमांटिक, सैड, डांस, पेपी, फास्ट नंबर्स, स्लो नंबर्स, सूफियाना अंदाज, सब कुछ गाया है इन्होंने। ही हैज संग एवरीथिंग फ्रॉम ओ हमदम सुनियो रे, एकदम ऐसे यू नो रॉक स्टाइल में ओ हमदम, टू समथिंग लाइक जरा सा, टू समथिंग लाइक तुझे संग लगी। पता है किसकी बात कर रही हूँ मैं? One and only KK. अरे पिछले आवर में भी KK ही थे देखा जाए तो, कैलाश खेर KK, पर अब दूसरे KK। उनके गाने आपके लिए सब पूरे आवर में छाए रहेंगे right here on your favorite Radio Tarana in the show Chill with Neha.

0: Hi, this is KK. Keep listening to my songs on Radio Tarana. Plug in.
1: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ. मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथटेकिंग फोटोग्राफ्स. दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K वीडियो शूटिंग फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी. गेट टुगेदर

0: स्ट्रीमिंग नाउ ऑन रोवर
1: टिराना। क्या काम की भागदौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, स्टोडाड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के लाभ की मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट, बिजनेस शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर के प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं। अरे डूबे ब्लैंकेट्स, स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडाड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स, 220 Stoddard Road, Mount Roskill. Aasan, bharosemand, aur 24/7.
2: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
1: अरे, Indelible Homes वाली गुड़िया इतनी बड़ी हो गई।
3: Hi, मैं हूँ गुड़िया, भाई गुड़िया, जिसके भैया ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था। अब मेरे पास मेरा अपना रूम है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। Thanks to Indelible Homes. Thank you. See you.
1: नया घर बनाना हो या सब डिवाइड करना हो, Indelible Homes. Phone 0800-233-111.
4: मेरे घर में हर रोज ये लड़ाई मुझे देखने को मिलती है, जहाँ गुड़िया को कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर वो मेरे पास रोती हुई आती है, भैया did this to me, भैया said that to me. फिर मुझे लॉयर भी बनना पड़ता है, जज भी बनना पड़ता है, सरपंच भी बनना पड़ता है, बहुत कुछ बनना पड़ता है, और इन मसलों को, इन लड़ाइयों को हर रोज़ सुलझाना पड़ता है। एंड आई एम श्योर आपके भी घर में अगर छोटे बच्चे होंगे, स्पेशली इफ़ देर आर टू ऑफ देम, सिब्लिंग्स अगर है, तो आप भी इस तरह के झगड़े रोज़ देखते होंगे और रोज़ उन्हें सुलझाते होंगे। उनको सुलझा सुलझा कर हमें ऐसा लगने लगता है कि यार हमसे बढ़िया मीडिएटर अब कोई है ही नहीं, हमें तो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना इतने अच्छे से आ गया है। Anyways, going back to the music, well, आज की KK की इस प्लेलिस्ट को इतने सारे लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे लग रहा है हमें KK की इस प्लेलिस्ट को नेक्स्ट आवर में भी जारी रखना होगा, क्योंकि इस आवर में तो हमने थोड़े सॉफ्ट एंड रोमांटिक नंबर्स सुने, अब मैं इनके थोड़े से मोटिवेशनल गाने आपको सुनाने वाली हूँ, एंड नेक्स्ट आवर में मे बी विल गो टू सम अपबीट पेपी नंबर्स ऑफ KK. Enjoy.

0: माँ हमारे सच्चे दोस्त एक नजर में पहचान लेती है, इस मतलब ही दुनिया को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए तो हद से ज्यादा ख्याल रखती है। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें, ठंड इन्हें ज्यादा लगती है, स्वेटर हमें तो पहनाती है। माँ अक्सर खुद का काम भूल जाया करती है, पर हमारी ख्वाहिशें वो इन्हें बिना बताए याद रहती है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: रेडियो तराना, टाइम चेक।
3: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
4: Good afternoon. Studio की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं.
5: This is Tarana News.
6: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. एक एली चालूर रिलीफ टीचर जिन्होंने 3 साल के लड़के के लिप्स पर किस किया था कि पहचान दी जा सकती है। एंक्वी गुई न्यू शूट्स हॉब्सनविल और पेस्कल्स हेनेबे एली चालूर सेंटर्स में रिलीफ टीचर की नौकरी करते थे। साल 2021 में उनके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद में उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने 3 साल के लड़के के लिप्स पर 2 बार और एक 4 साल के बच्चे के हाथ पर किस किया था। सुनवाई के दौरान गुई के एक पूर्व कॉलीग ने बताया कि उन्होंने 3 साल के लड़के के लिप्स पर गुई को किस करते हुए 2 बार देखा था। ट्राइब्यूनल ने गुई के नेम सेपरेशन की अर्जी को ठुकरा दिया और कहा कि अगर वे टीचिंग में वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें बाउंड्रीज पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स पूरा करना होगा और 1 साल के लिए मेंटरिंग करना होगा। गुई को प्रोसिक्यूशन और ट्राइब्यूनल कोस्ट में $35,125.90 भरने का आदेश भी दिया गया। पुलिस का कहना है कि फील्डिंग में एक गाड़ी में जो पिस्तौल देखी गई थी वह नकली है। पुलिस का कहना है कि कल रात 10:30 फील्डिंग के हॉब्सन स्ट्रीट में एक व्यक्ति को रास्ते के किनारे ट्रेलर पर प्लाईवुड को लोड करते हुए देखा गया था। व्यक्ति को देखे जाने के बाद में पुलिस व्यक्ति के पास गई थी, उनकी गाड़ी में एक पिस्तौल दिखा था। पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद में उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी से मेथमफेटमिन, ड्रग यूटेंसिल्स, एक्सटेसी टैबलेट्स और कैनबिस सहित $4,000 नकद पैसे एक पैकेट में बंधे उनके पैर में बंधे हुए मिले थे। पुलिस ने पुष्टि की है कि जो पिस्तौल मिली थी वह नकली है। 42 वर्षीय आरोपी को पामस्टन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया है। उन पर अनलॉफुली पोजेसिंग ए इमिटेशन फायर आर्म, पोजेशन ऑफ मेथमफेटमिन, ड्रग यूटेंसिल्स, कैनबिस प्लांट और एक्सटेसी वाले चार्जेस लगे हैं। देश में दिसंबर चौथाई के मुकाबले भले ही मार्च चौथाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरकर 5.3% हो गई है, लेकिन कुछ रीजन्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बहुत ज्यादा है। ऑकलैंड में पिछले 12 सालों के मुकाबले अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा 6.6% रिकॉर्ड हुआ है। वेलिंगटन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3% जबकि बे ऑफ प्लेंटी में 7.1% है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑकलैंड में इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है क्योंकि कई बड़े इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं कर रहे हैं जिनमें रिटेल और कंस्ट्रक्शन शामिल है। देश में फ्यूल स्टॉक कम हुआ है। मिनिस्टर ऑफ बिजनेस इनोवेशन एम्प्लॉयमेंट की ओर से जो डाटा जारी किया गया है पिछले अपडेट के मुकाबले यानी कि 52 दिनों के मुकाबले अब देश में 49 दिनों के लिए पर्याप्त पेट्रोल है, जबकि डीजल की ओर देखा जाए तो पहले के 52 के मुकाबले 47 दिनों के लिए पर्याप्त डीजल इस वक्त देश में है। वहीं जेट फ्यूल जिसे पिछले अपडेट में 58 दिनों के लिए पर्याप्त बताया गया था, ये गिर करके 55 डेज के लिए अब हो गया है।
5: स्पोर्ट्स न्यूज।
6: पोर्चुगीज क्लब बेनफिका टीम के विंगर जियालुका प्रेस्टियानी पर वर्ल्ड वाइड बैन लागू किया गया है। 20 वर्षीय प्रेस्टियानी को पिछले महीने यूएफए ने 6 मैचों का प्रतिबंध लगाया था जब उन्होंने फरवरी में चैंपियंस लीग मैच के दौरान रियल मैड्रिड खिलाड़ी विनिसियस जूनियर पर सामलैंगिक विरोधी टिप्पणी की थी। उन्होंने इस आरोप को स्वीकार कर लिया था। 1 मैच का अस्थायी प्रतिबंध पहले ही लग चुका है और अब उन पर 2 और मैचों का प्रतिबंध लगेगा। बाकी 3 मैचों का प्रतिबंध 2 साल के लिए निलंबित रहेगा और अगर उन्हें अर्जेंटीना की ओर से वर्ल्ड कप में खेलने के लिए टीम में चुना जाता है तो वे वर्ल्ड कप के प्रथम 2 मैचेस नहीं खेल पाएंगे।
7: बोर्ड,
8: उदास हो,
7: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज,
8: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज,
7: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ, आपका साथी बरसों पुराना,
8: चलो समेटो खुशियों का खजाना।
5: ओनली ऑन

चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वेस्ट सिटी GWM हवेल, हवेल की हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पर डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेला और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। For more information, visit westcityautogroup.nz or search on socials for West City Auto Group.

0: Quality Care Dental with over 24 years of experience. We make your family's dental health easy and affordable, offering general dentistry and now special interest in pediatric dentistry for kids. Set up your dental care appointment with Dr. Sangeeta Mankal and team. Quality Care Dental. Call us on 0800 My Dentist or 09626 5205.
1: Quality Care Dental.
2: Always very gentle.
3: राजस्थान की मेहमान नवाजी के तो क्या कहने, और अब वही मेहमान नवाजी और वही स्वाद आपको मिलेगा यहाँ ऑकलैंड में एट श्री रेस्टोरेंट. ऑथेंटिक राजस्थानी एंड डिलीशियस इंडियन वेजिटेरियन क्विजीन. राजस्थान की मशहूर दाल बाटी चूरमा, चाट आइटम्स एंड मेनी अदर स्नैक्स एंड फुल मील्स. ऑकलैंड के मशहूर शेफ रामेश्वर आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं टू द श्री रेस्टोरेंट एट 11 bar 726 ग्रेट साउथ रोड मानिकाव ऑपोजिट रेनबोज इन. और यहाँ फंक्शंस होस्ट करने के लिए भी बड़ी जगह अवेलेबल है. Shree Restaurant. Open 6 days, closed on Wednesdays.
4: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: सुबह की जद्दोजहद के बाद और शाम की अफरा तफरी से पहले दोपहर में करे थोड़ा चिल. चिल विद मी नेहा.
6: चिल विद नेहा मंडे टू सैटरडे 1 PM टू 4 PM ऑन रेडियो तराना.
3: Hi listeners, Radio Tarana सुन रहे हैं आप और मैं हूँ नेहा आपके साथ इन द शो चिल विद नेहा. स्वागत करती हूँ एक बार फिर आप सभी का आज थर्सडे आफ्टरनून के इस प्रोग्राम में. गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी थर्सडे एवरीवन. अच्छा, प्रोग्राम का ये आवरना एक बड़ी ही कमाल की बात के साथ मैं शुरू करने वाली हूँ. अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक रील देख रही थी जिसमें इस quote का जिक्र हुआ, और जब मैंने इस बात को सुना वाज लाइक यार कितनी सही बात किसी ने कही है कि जस्ट बिकॉज आई कैरी इट वेल, just because I carry it well, it doesn't mean it's not heavy. Wow! इतनी depth है ना इस एक बात में. क्या होता है कई बार हम किसी को देखते हैं और लगता है कि यार इनकी लाइफ में तो सब सही चल रहा है, you know, easy peasy man. But maybe it's just looking easy peasy, but it's actually not that easy. Maybe it's very difficult, but it's just the way that person is managing the things, just the way that they are lifting that load, that heavy load in their life, that they make it appear to be very easy. Again, ये बात मैंने कई बार mention की हुई है कि you know, काम के context में, कि कई बार कुछ लोगों का काम देखकर हमें लगता है कि यार ये तो हम भी कर लें, इसमें क्या बड़ी बात है. बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो काम आसान है. उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इंसान उस काम में इतना मंझा हुआ है कि वो जिस ईज के साथ, जितनी एफर्टलेसनेस के साथ उस काम को करके दिखा देते हैं बड़ी नेचुरल तरीके से, दूसरे को देखने वाले को लगता है कि ये काम तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है. बट इट्स एक्चुअली देयर एक्सपीरियंस, देयर थरो एक्सपीरियंस इन देयर वर्क, इन देयर क्राफ्ट, कि दे मेक इट लुक वेरी ईजी. उसी तरह से लाइफ में कई बार हो सकता है कि कोई बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहा है, बट दे हैव सो मच रेजिलियंस विद इन देम कि वो अपनी इनर स्ट्रेंथ की वजह से उस चीज़ को मुश्किल लगने ही नहीं देते दूसरों को. दूसरों को लगता है तो बड़ी आसान सी चीज़ है, इसमें क्या है, पर उसमें क्या है वो आपको तभी समझ आएगा जब आप खुद उस सिचुएशन से गुजरेंगे या उस चीज़ को कैरी करेंगे, उस बोझ को कैरी करेंगे जिसे वो एफर्टलेसली कैरी कर रहे हैं. सो रिमेंबर दिस थिंग एंड डोंट जज पीपल अराउंड यू. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कोट दैट जस्ट बिकॉज आई कैरी इट वेल डजंट मीन इट्स नॉट हैवी. ओह हैवी मैन, हैवी, भारी भरकम ये लाइन थी. चलो अब इसी नोट पर शुरू करते हैं शो का ये आवर. एंड जैसे कि मैंने कहा था कि पिछले आवर में केके के गाने छाए रहे और इस आवर में भी छाए रहेंगे, तो लास्ट आवर उनके मोर रोमांटिक एंड सॉफ्ट नंबर्स को हमने एंजॉय किया. अब इस आवर में फुल ऑन ढिंचैक. ये गाना आने वाला है, देन ये ट्रैक. ये लापता गाना बड़ा बढ़िया है यार, एक था टाइगर फिल्म का, बड़े दिनों से नहीं सुना, तो ये गाना एंजॉय करेंगे. देन फुल ऑन पार्टी नंबर्स हैं केके के. उसके बाद ये गाना भी आने वाला है. वाओ, गरम मसाला फिल्म का ये गाना बड़े टाइम से नहीं सुना. डूबा डूबा डूबा डूबा, आगे इस गाने में वो हुक लाइन आती है.
1: नहीं कर सकता,
3: बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये ट्रैक भी आने वाला है और इस आवर में ये गाना भी आप सुनेंगे। जबरदस्त प्लेलिस्ट है मेरी इस आवर की, तो एंजॉय करते रहे और चिल करते रहे यहीं रेडियो तराना पर विद मी नेहा।

0: Hi, this is KK. Keep listening to my songs on Radio Tarana. Plug in.
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश टीज एंड सीज अप्लाई इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए फ्लाई विद एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया दिल्ली हो या अमृतसर मुंबई हो या अहमदाबाद एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ तो अगली बार घर का सफर हो फ्लाई एयर

0: नमस्ते ऑकलैंड, मुश्किल वक्त में सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज आपके साथ हैं।
1: ये ऑफर करते हैं कंप्लीट फ्यूनरल पैकेज सिर्फ $4,299 से।
0: इस पैकेज में शामिल है ट्रांसफर्स, एम्बामिंग और सर्टिफिकेट, ग्रोवना कास्केट, लाइव स्ट्रीमिंग, एक घंटे का चैपल सर्विस, क्रिमेशन या बुरियल, डॉक्टर सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई एंड प्रोड्यूस करना, ओवरसीज रिपेट्रिएशन अवेलेबल है।
1: ये विन्स अप्रूव्ड है, ऑकलैंड रीजन के लिए वैलिड।
0: ऑकलैंड के बाहर के लिए कॉम्पिटिटिव रेट्स के लिए कॉन्टेक्ट करें शलिन सिंह को 0272929776। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz। इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डिजिसेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई। हे एवरीवन, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ बेड्स मनिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ बेड्स मनिका सुपर सेंटर। NZ बेड्स में मिलूंगी मैं आपको इस सैटरडे को सुबह 10 AM से लेकर मिडडे तक। मैं यहाँ पर रहूंगी एंड वी विल हैव सम अमेजिंग इन स्टोर डील्स, जहाँ पर आपको अप टू 70% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन सिलेक्टेड बेड्स एंड मैट्रेसेस, मैट्रेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $299। वाओ, लाइक दैट इज अ क्रेजी प्राइस। और साथ ही और भी बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग स्पेशल्स रहेंगे। यू नो, अगर आपका कोई सर्टन बजट है, एक अमाउंट है आपके दिमाग में, तो कोई नहीं, आप बजट लेकर आइएगा, इन्हें बताइएगा भाई हमारा ये बजट है, उसके अंदर ही आपको बेड दिखा देंगे। अगर आपको है भाई बजट की टेंशन नहीं, अपने को बेस्ट चीज़ चाहिए, तो हाई टेक AI बेड्स भी आजकल आ गए हैं, तो ये भी आप आगे चेकआउट कर सकते हैं विद ऑल दोज इनक्रेडिबल फीचर्स इन बिल्ट, तो ये भी आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पुराना बेड है जो आप ट्रेड इन करना चाहते हैं, यू नो व्हाट, दे आर गिविंग द ऑप्शन ऑफ ट्रेड इन एज वेल। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। आप आकर इनसे बात कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा, सो यू माइट बी एबल टू ट्रेड इन योर ओल्ड बेड एंड गेट सम मोर फर्दर डिस्काउंट ऑन ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइजेस। और ऊपर से एवरी परचेज के साथ वन पिलो फ्री। दिस इज हैपनिंग एट NZ बेड्स का मनिका सुपर सेंटर स्टोर, जो है एट द कॉर्नर ऑफ लैम्बी ड्राइव एंड कैवेंडिश ड्राइव। तो इस सैटरडे यहाँ पर आपसे मिलूंगी मैं और आपको शॉपिंग भी कराऊंगी। पर फिलहाल KK की प्लेलिस्ट जारी है। KK के कुछ और रॉकिंग नंबर्स आगे आपको मैं सुनाने वाली हूँ ऑल द वे टिल 4 PM। पर उससे पहले जाते जाते एक मस्त वाला शेर सुना कर जाना चाहती हूँ। क्या बात है वाले सेगमेंट में अर्ज किया है कि उनके चेहरे की चमक के आगे सादा लगा, उनके चेहरे की चमक के आगे सादा लगा, चांद पूरा था आसमां में पर आधा लगा।
2: क्या बात है,
1: क्या बात है यार, लिखने वाले भी क्या क्या लिख देते हैं, मजा आ जाता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मजा आया होगा आज प्रोग्राम में, मुझे तो बहुत मजा आया। थैंक यू साथ देने के लिए। कल फिर मिलेंगे और एक साथ चिल करेंगे। टेक केयर, बाय।

0: streaming now on Rover. Tirana.
1: माँ के प्यार की हदें नहीं होती है, अपने बच्चों के सामने इनके लिए कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती है। जान बसती है इनकी हम में और हमारी इनमें, इसीलिए सुबह सुबह उठकर आवाज देती हूँ, सूरज आता होगा अपने वक्त पर। मैं तो अपना सूरज माँ की सूरत में ही देख लेती हूँ। जब आस पास सिर्फ अंधेरे दिखाई देते हैं तो आंख मूंद उनकी मुस्कान याद कर लेती हूँ, तुरंत उनकी आवाज सुन लेती।
2: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।

0: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800 233 111. Website indelibleHomes.co.nz. Foods.
1: गुड आफ्टरनून, ये रेडियो ताराना है। मैं हूँ आपका कैप्टन सतेन शर्मा। इस समय हमारे स्टूडियोज में 4 बज चुके हैं।
2: दिस इज ताराना न्यूज
3: समाचार, सुनिए संजेश नारायण से। पुलिस मंत्री मार्क मिचेल और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने एक महिला से उसके फेसबुक पोस्ट को लेकर के क्यों बात की। रिनी रोज स्वेंके ने पिछले महीने के अंत में एक सेल्फी पोस्ट की थी जो किसी सार्वजनिक स्थान पर ली गई प्रतीत होती है। उनके बाएं ओर भारतीय दिखने वाले दो पुरुष हैं जिन्हें शायद इस बात का एहसास ही नहीं है कि फोटो खींची जा रही है। स्वेंके के पोस्ट का कैप्शन है, लक्ष्य सिंह की बदौलत नए भारत में आपका स्वागत है, जो संभवतः न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच हुए फ्री ट्रेड डील और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का संदर्भ है। स्वेंके ने इस महीने की शुरुआत में एक अन्य पोस्ट में बताया कि पुलिस ने उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन बुलाया, जहां एक वरिष्ठ साजन ने उनके शब्दों में कहा कि उनका पोस्ट भारतीय समुदाय के लिए अपमानजनक था। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए लिखा था कि जब आप नाराज लोगों के नरम अत्याचार के अधीन रहते हैं तो क्या होता है। लेबर पार्टी के डेप्यूटी लीडर कामिल सेपोलोनी ने न्यूजीलैंड फेस्ट पार्टी सांसद शेन जोन्स के बटर चिकन सुनामी वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि यह नस्लवादी टिप्पणी है तथा इसे देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील को लेकर के शेन जोन्स का यह बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अब देश में बटर चिकन सुनामी देखने को मिलेगा।
4: It is, and it's a type of scaremongering that goes back many, many decades. You know, that type of scaremongering where you imply to New Zealanders that people are going to come from overseas and take the jobs away from the New Zealanders that need it. Actually, we have been reliant for a number of decades on people coming from overseas and filling the skills gaps and helping us to grow the economy and doing the work where we haven't got the workers to do it. And so that type of scaremongering is unacceptable.
3: वेस्ट ऑकलैंड के रानुई में जिस वृद्ध व्यक्ति पर चाकू से वार किया गया था, उन्हें पता ही नहीं चला कि उन पर वार किया गया है। 70 वर्षीय व्यक्ति के बेटे, जिन्होंने अपनी पहचान मीडिया में सिर्फ सोहेब के नाम से दी है, का कहना है कि उन्हें लगा कि कोई उन्हें छू कर गया है, लेकिन जब पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने किसी को वहां से भागते हुए देखा है, तब उन्होंने अपने जैकेट के अंदर देखा तो उनके शर्ट में खून लगा हुआ था। 70 वर्षीय व्यक्ति का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। वेस्ट ऑकलैंड में दो अलग अलग स्टैबिंग वाली घटनाओं में 23 वर्षीय एक महिला सहित 29 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कैलम मैकनील का कहना है कि स्टैबिंग वाली एक घटना के बाद में पीड़ित व्यक्ति को वे स्वानसन रोड पर मेडिकल सेंटर लेकर गए थे। उस स्टैबिंग वाली घटना के संबंध में 23 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया है। जब पुलिस पीड़ित व्यक्ति को लेकर के मेडिकल सेंटर के अंदर थी तो पुलिस को जानकारी मिली थी कि किसी के सर पर चाकू से वार किया गया है। दोनों पुलिस ऑफिसर्स जब बाहर जांच करने के लिए गए तो 29 वर्षीय व्यक्ति ने एक पुलिस ऑफिसर को धकेला था और वहां से भागते हुए उन्होंने 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति को चाकू मारा जो मॉस्क में नमाज के बाद में रानुई फार्मेसी की ओर जा रहे थे। बंगाल में जारी चुनावी हिंसा के बीच में बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीआई चंद्रनाथ दत्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हमले में उनके पीएस बुद्धदेव भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना मध्यग्राम में हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने चंद्रनाथ को करीब से गोली मारी, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब 4 मई को नतीजे आने के बाद से ही बंगाल में जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी के पीआई की मौत के बाद में हालात और बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। चंद्रनाथ रथ को जब गोली मारी गई तब वो अपनी कार से जा रहे थे। उनकी कार एक दुकान पर रुकी और तभी पीछे से आ रहे हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। घटना के वक्त शुभेंदु अधिकारी मौके पर नहीं थे। उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन डेवलपमेंट बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान हुई उच्च स्तरीय चर्चाओं के बाद में फिजी ने आगामी राष्ट्रीय बजट में मौजूदा फ्यूल संकट से निपटने के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर्स की कॉन्सेशनल फाइनेंस एशियन डेवलपमेंट बैंक से हासिल की है। वित्त मंत्री एस्ट्रोम इमैनुअल और फिजी रिजर्व बैंक के गवर्नर आरिफ अली ने उज्बेकिस्तान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंधन से मुलाकात की। फाइनेंस मंत्रालय का कहना है कि 200 मिलियन डॉलर्स का जो कॉन्सेशनल फाइनेंस लिया जा रहा है, इसका विवरण तैयार किया जा रहा है।
2: स्पोर्ट्स न्यूज।
3: चैंपियंस लीग के डिफेंडिंग चैंपियंस पेरिस सेन जर्मेन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख के होम ग्राउंड में उसके साथ में मैच 1-1 गोल से बराबर खेलने और 6-5 एग्रीगेट के साथ में पेरिस सेन जर्मेन ने चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली है। फाइनल में उसका सामना आर्सेनल से होगा। पेरिस सेन जर्मेन की ओर से बिलिंडुआ विनर ओसमाने डेम्बेले ने 3rd मिनट में ही गोल स्कोर कर दिया था, जबकि बायर्न म्यूनिख की ओर से इंजरी टाइम में हैरी केन ने गोल बनाया था, जो कि टीम को चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचाने के लिए काफी नहीं था।
5: Turn a driver.

0: शर्मा जी, आपसे बातें करने के लिए आपका कैप्टन आ गया है और अभी से लेकर आज भी 7 बजे तक आपके साथ में रहेंगे हम। थर्सडे की शाम, इट इज ब्यूटीफुल, धूप है ओकलैंड में, 19-20 डिग्रीज टेम्परेचर्स है, कहीं कहीं पर बदरी है और कल भी ऐसा ही वेदर रहेगा। अभी मैंने क्लिक करके ये चेक किया, वेलिंगटन में कल हवाएं चलेंगी, कल ज्यादातर क्लाउडी ओकलैंड में, हैमिल्टन में और क्राइस्टचर्च में अभी तो ठीक है, और कल बताया गया है सुबह के वक्त बदरी और शाम के समय तेज हवाएं चलेंगी। तो ऐसा वेदर आज और कल के लिए, लेकिन अभी थर्सडे की शाम आइए तराना ड्राइव मस्ती 427 में आपका स्वागत। और ये जो प्रोग्राम है ये हम लेकर आते हैं, इसमें खास होता है एक सेगमेंट जो 4 से 5 के बीच में मैं लेकर आता हूं, जिसको कशिश फूड्स की ओर से स्पॉन्सर्ड किया गया और ये है बस बजना चाहिए गाना।
1: बस बजना चाहिए गाना, बस बजना चाहिए गाना, अरे गाना गाना गाना, बस बजना चाहिए।
2: राइट, बस बजना चाहिए गाना।
0: गाने मस्त मस्त रहेंगे अभी से लेकर 5 के बीच में, 5 बजे के बाद द बॉयज विल बी विद मी इन दिस स्टूडियो।

0: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेडशीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं, ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रो स्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोरार्ड रोड मॉन्ट्रो स्किल, आसान, भरोसे और 24/7।
1: एल्स डिस्काउंट फर्नीचर पापा टोए में चल रहा है अमेजिंग स्पेशल फ्रॉम बेड्स, डाइनिंग स्वीट्स एंड लाउंज स्वीट्स। खरीदिए ब्यूटीफुल 7-पीस डाइनिंग स्वीट या क्वालिटी कॉर्नर लाउंज स्वीट और लग्जूरियस क्वीन पिलो टॉप पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस एट रीजनेबल प्राइस। क्वालिटी फर्नीचर लो प्राइस में। एल्स डिस्काउंट फर्नीचर, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, 355 ग्रेट साउथ रोड, पापाटोय।
2: टाइम आउट रेफ।
3: हियर्स द प्ले। We grab crispy chicken McWings from Macca's. We dunk them in Korean sticky barbecue sauce. We leave no crumbs. Let's go. Available between 11 a.m. and 11 p.m. T's and C's apply.
4: At Woolworths, whether it's a Sunday roast or midweek wraps, we've got chicken for every occasion. Now you can grab our fresh chicken thighs, bone-in, skin-on, on special for just $5.90 a kg. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
5: Tiaki Wai is your new council-owned water organisation. From 1st July, Tiaki Wai will deliver water services across Wellington, Hutt Valley and Porirua. Find out more at tiakiwai.co.nz.
6: Proudly brought to you by Kashish Foods. Kashish Atta, 100% Chakki Fresh Atta. Now available in all stores nationwide.
7: ओके, एक और ट्रैफिक अपडेट थोड़ी ही देर में आपके लिए हम लेकर आएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बॉस, आज वर्ल्ड पासवे डे भी है। यू नो, कहीं कहीं पर किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं देखता हूं कि अभी भी लोग 1, 2, 3, 4, 5 अपना पासवर्ड रखते हैं। बॉस, ओके, क्या आपका सिस्टम नहीं बताता कि ना? और कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, वो जो है आई क्लाउड वाला अकाउंट हो या गूगल ऐप वाला कोई अकाउंट हो, एंड यू वॉन्ट टू यूज समथिंग विच यू कैन रिमेम्बर, और वो सिस्टम बताएगा नहीं, कुछ नया यूज करो, कुछ और ऐड करो। भाई साहब, मुझे याद भी करना होगा बाद में नो लॉग इन करने के लिए, लेकिन सो फ्रस्ट्रेटिंग। मेरा पासवर्ड है, मैं इसको यूज करना चाहता हूं कुछ इजी रख के, लेकिन इट विल टेल, ये करेक्टर रखो, वो करेक्टर रखो, और अगर कोई पुराना वाला यूज करना है तो कहेंगे नहीं, कुछ और यूज करो। समटाइम्स आई गेट इरिटेटेड विद दिस ऑल्सो, शायद एज का असर होगा। आज नेशनल टूरिज्म डे भी है। ओके, मैं भी आजकल टूरिज्म इंडस्ट्री से, अभी मेरा वो शर्मा ट्रेवल्स वाला वेबसाइट लॉन्च होने वाला है। ओके, तो देयर इज अनदर थिंग, वहां से भी आप मेरे टूर्स के बारे में जानने लगोगे, और शायद वहां से भी आपको हम यू नो अपने आप से जोड़ सकें, और नेक्स्ट फ्यू टूर्स के बारे में आपको पता रहेगा कि व्हाट्स हैपनिंग, कब कहां जाना है और किस में आपको इंटरेस्ट रहेगा, और आइटनरीज वगैरह वहीं रखेंगे और वहां से आप मेरे साथ जुड़ सकोगे। ओके, जुलाई में जापान इट्स फुल, सितंबर में इंडिया ऑलमोस्ट फुल, एक दो जगह है, और अब मैं नेक्स्ट ईयर जनवरी 8 को जो टूर यहां से वियतनाम, कैम्बोडिया, बैंकॉक के लिए ले जा रहा हूं, उसमें 4 लोगों के लिए जगह है। बॉस डूइंग वेल, मिस्टर शर्मा थैंक यू फॉर योर सपोर्ट पीपल। आज और भी चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसके बारे में इतिहास के पन्नों वाला सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये गाना जो है, इसका मजा लीजिए आप, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्योंकि इस गाने को भी गाया है SP बाला सुब्रमण्यम द मैन।

0: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
1: Scammers want you to rush because it's harder to notice when things aren't right. Security features in the BNZ app help you take your sweet time. Bank of New Zealand. Let's find a way.
2: I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down.
3: क्या काम की भागदौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के आपकी मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट्स, ब्लेजर, शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर की प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं। अरे डूबे ब्लैंकेट, स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स, 220 स्टोडार्ड रोड मॉन्ट्रोस। आसान, भरोसेमंद और 24/7।
4: Indelible Homes are specialized in building high quality standalone and terraced houses at very reasonable prices. Please send your RC, BC drawings and they will build for you. Visit indelibalehomes.co.nz or call 0800-233-111. That's 0800-233-111.
5: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May, in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
6: The Haspadi Tugana, the Rupadi Tugana.
7: Proudly brought to you by Kashish Foods. Kashish Atta, 100% Chakki Fresh Atta, now available in all stores nationwide.
8: बस बजना चाहिए गाना में आज भी बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आपको हम सुनवा रहे हैं। अब की बार कैप्टन की कलेक्शन से एक ऐसा गाना आपको हम सुनवाएंगे जो मुझे पर्सनली पसंद है। कभी कभी जिंदगी कैसी है पहेली हाय, यू नो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, वो गाना हम सुनते हैं। लेकिन ये भी काफी काफी मीनिंग से भरा हुआ गाना है। और बैक इन द डेज, ये गाना जब विनोद राठौड़ को बहुत कम फिल्मों में गाना गाने का मौका मिलता था, एक गाना उन्होंने गाया बड़ा अच्छा लगा और फिर उसके बाद में आई थिंक फिल्म बाजीगर में जाकर उनको दोबारा अच्छा ब्रेक मिला। जिस गाने का हम जिक्र कर रहे हैं वो गाना फिलहाल आज बस बजना चाहिए गाना सेगमेंट में आपको हम सुनवाते हैं।

0: डैडी कैसे? राम राम।
1: ठीक बेटा, राम राम। घर बने? कहाँ तक पहुँचा?
0: पेंटिंग हुए डैडी।
1: कितना अच्छा बिल्डर मिल गए रे। क्या नाम है उन लोगों के?
0: इनडेलेबल होम्स।
1: हमारे पास भी 10-15 घर रहता अगर हमारे टाइम पे ऐसा बिल्डर मिल जाता।
0: अभी भी सकता बनाए डैडी, बनाए के हमें दे दो। हाँ,
1: वाह।
2: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111.
3: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरोल कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 0981538111। डी कैरोल कर्टन्स।
5: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
6: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.

0: राइट, बस बजना चाहिए गाना।
1: 5 पर नेक्स्ट वर्ल्ड न्यूज संजेश लेकर आएंगे। संजेश को अपने शो में नेक्स्ट वीक हम लेकर आएंगे, नेक्स्ट थर्सडे को चटपटी खबरों में। लास्ट जब वो उधर फिजी में थे, छुट्टियां मना रहे थे या कुछ काम से वो फिजी गए थे, तो मिस हो गया था उनका सेगमेंट। काफी दिनों से अभी नहीं हुआ है। आई रिमेम्बर वो जो अपना टूर पर बाली बैंकॉक जाने से पहले ही उनसे बातें हुई थी। फिर उसके बाद अब लगभग एक महीना या उससे ज्यादा हो गया है। आई हैवंट हैड द न्यूज एडिटर चटपटी खबरों के साथ में। लास्ट वी हैड संगीता मारी बैन फिलिंग इन फॉर संजेश। संजेश खबरों के साथ 5 पर आपके साथ में हो जाएंगे। अभी दो गाने आपको हम सुनवाते हैं। वो ये गाना एक बार मैं पेश करने वाला था और कह रहा था एसिड रिफ्लक्स हो या गैस्ट्राइटिस होने लगे, हार्ट बेंस होने लगे, तो शायद ये भी गाना आप गुनगुना सकते हो।

0: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
1: सैटरडे 9 मई को तराना टीम के साथ आए शॉपिंग करने के लिए एट एनजेड बेड्स मानिकाओ सुपर सेंटर स्टोर एंड गेट सम एक्सक्लूसिव डील्स जैसे वन फ्री पिलो विद एवरी परचेज ऑफ एनी बेड।
2: ऑकलैंड में नॉर्दर्न मोटरवे बताया गया है कि कॉन्स्टेलेशन ड्राइव 46 मिनट्स, नॉर्थ वेस्टर्न मेसी 41 मिनट्स लगेगा और सदर्न मोटरवे मानिकाओ 58 मिनट्स और एयरपोर्ट 42 मिनट्स।
3: वेलिंगटन सिटी सेंटर से पोरिरुआ सिटी सेंटर 22 मिनट्स, लवाहट सेंट्रल 30 मिनट, इसबोर्न 42 मिनट्स और एयरपोर्ट 16 मिनट्स।
1: मैट्रेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $299, द वाइडेस्ट रेंज ऑफ बजट बेड्स एंड हाईटेक बेड्स एट एनजेड बेड्स। तो आए इनके मानिकाओ सुपर सेंटर स्टोर में ऑन सैटरडे 9th मई at the corner of Lambie Drive and Cavendish Drive.
4: Tiaki Y is your new council-owned water organization. From 1st July, Tiaki Y will deliver water services across Wellington, Hutt Valley and Porirua. Find out more at tiakiy.co.nz.
5: Har tarah ka ilaaj karwa ke dekh liya, par ye bimari jaane ka naam hi nahi le rahi.
6: To Dr. Ajik ke paas gayi, unki Ayurvedic treatment lekar dekho.
5: Ayurvedic? वो काम करता है?
6: बिल्कुल, डॉक्टर अजीत पिछले 4 दशक से उन बीमारियों का स्थायी इलाज कर रहे हैं जिनसे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी।
5: पर यह सुरक्षित तो है ना?
6: सिर्फ सुरक्षित नहीं, यह तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को सेहतमंद बना देता है।
1: कंसल्टेशन एंड अपॉइंटमेंट्स के लिए डॉक्टर अजीत को आज ही कॉल करें 09303-0065 पे या विजिट 465 पानल रोड पानल, वेबसाइट ayurda.com।
7: Get mum a gift she'll love from Bunnings.
8: We've got plants, the hanging baskets, the seedlings. We've got a really good range of coloured pots as well. This year, give a Mother's Day gift that keeps on growing.
9: 14-centimetre Calathea prayer plant, only $26.87. Fisker's Ruby Bypass Pruners, $36.95. Northcote Pottery 20-centimetre Paloma Egg Pot, just $19.98.
8: Pop into Bunnings and find something she'll love.
10: Bunnings Warehouse.
8: Lowest prices are just the beginning.
11: यार मुझे फिजी जाना था।
12: कब जाना है?
11: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
12: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
11: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
12: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
1: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965202228।
12: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
13: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry. Now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
14: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सिंह।
15: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर।

0: माँ हमारे सच्चे दोस्त एक नजर में पहचान लेती है, इस मतलब ही दुनिया को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए तो हद से ज्यादा ख्याल रखती है। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें, ठंड इन्हें ज्यादा लगती है, स्वेटर हमें तो पहनाती है। माँ अक्सर खुद का काम भूल जाया करती है, पर हमारी ख्वाहिशें वो इन्हें बिना बताए याद रहती है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: रेडियो तराना, टाइम चेक,
3: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स। Phone 0800-233-111. Website indelibleholmes.co.nz.
4: थर्सडे की शाम है, इस समय हमारे स्टूडियोज में 5 बज चुके हैं। न्यूज का वक्त हो गया।
5: दिस इज तराना न्यूज।
6: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। नए सिटीजनशिप टेस्ट के तहत एप्लीकेंट्स को टेस्ट पास करने के लिए 6 मौके दिए जाएंगे तथा पास रेट 75% रखा जाएगा। इंटरनल अफेयर्स की ओर से जो टेंडर जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 2 पीरियड्स जो कि 30 वर्किंग डेज के अंदर होंगे में एप्लीकेंट्स को सिटीजनशिप टेस्ट पास करने के लिए 6 मौके दिए जाएंगे। अगर 6ठी बार भी व्यक्ति फेल हो जाते हैं तो उनके लिए कुछ विकल्प होंगे, जिनमें एक तो ये होगा कि वे अपने सिटीजनशिप एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकेंगे या फिर वे चाहेंगे कि मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स उनकी अर्जी पर गौर करे। यह टेस्ट 45 मिनट्स का होगा तथा 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अभी फीस तय नहीं किया गया है, लेकिन जो टेंडर जारी किया गया है उसके मुताबिक हर एक कैंडिडेट को $24 इस टेस्ट के लिए भरना होगा। अंडर 16 और ओवर 65 को इस एग्जाम से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, यानी कि उन्हें ये एग्जाम नहीं करना पड़ेगा। मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स ब्रूक वैन वाल्डन का कहना है कि वह चाहेंगी कि जो कंपनी ये टेस्ट करवाती है वो ये देखे कि कोई चीट ना करे। इसके साथ ही नए नियम लागू होने से पहले जो लोग सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर देंगे उन पर ये नया नियम लागू नहीं होगा। लेबर पार्टी की डेप्यूटी लीडर कामेल सेपलोनी का कहना है कि वह ये नहीं समझ पा रही है कि क्यों इस तरह के प्रस्ताव को लाया गया है।
7: I don't even understand why, you know, this is being proposed. You know, even some of the expectations around English language, you know, for me personally, you know, I had a father that came here in 1964 from the Pacific Islands. He didn't have any English, but he learnt it very quickly. And he contributed a great deal to this country.
6: प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से सिटीजनशिप टेस्ट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और यूके में कई सालों से ऐसा हो रहा है तथा वे इसका समर्थन करते हैं।
8: And it's probably not a bad thing that actually New Zealand, you know, new New Zealanders are positively ascribing, you know, some pretty basic stuff about women's rights.
6: लेबर पार्टी की डेप्यूटी लीडर कामेल सेपलोनी का कहना है कि कॉलिशन सरकार में शामिल एक्ट और न्यूजीलैंड फेस्ट पार्टियां ये साबित करना चाहती हैं कि किसके पास में बेहतर इमिग्रेशन पॉलिसी है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक्ट पार्टी ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट की है। एक इंटरव्यू में जब हमने कामेल सेपलोनी से पूछा कि क्या वो सोचती हैं कि कॉलिशन सरकार स्थिर है, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ये नहीं पता चलता कि कॉलिशन पार्टनर्स सरकार में है या वे एक दूसरे के विपक्ष में है।
7: They have been eating each other in recent weeks in particular, you know, even in question time in the House. Sometimes you have to wonder who the opposition is because you've got Nicola Willis and Winston Peters going each other when they are supposed to be part of the same government. More recently, you've had Erica out there condemning David Seymour and the ACT Party's policy on immigration. So they haven't been able to hold it together. We already saw them cracking.
6: रूरल सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड के एक प्रॉपर्टी में एक दंपति की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रेंडन और ट्रीना कोल की हत्या पिछले साल गोली मार कर कर दी गई थी। पुलिस ने पुष्टि की है कि 30 वर्षीय आरोपी पर मेरा वाले चार्जेस लगा दिए गए हैं। दंपति को उनके रुवतीथि फार्म के ड्राइववे में गोली मार दी गई थी। उनके शव वहीं पड़े रहे जहां वे गिरे थे और कई दिनों बाद यानी 13 दिसंबर को वे मिले थे। टेक्सास के एक डिलीवरी ड्राइवर जिन्होंने 7 साल की लड़की का अपहरण करने के बाद में उनके साथ में दुष्कर्म किया था और हत्या कर दी थी को मौत की सजा सुनाई गई है। ये घटना 30 नवंबर 2022 की है। 34 वर्षीय ठेना होना को 7 साल की लड़की का अपहरण करने और उनके साथ में दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। होना ने दावा किया था कि उनके फेडेक्स वैन से टक्कर लगने के बाद में अथेना घायल हो गई थी, जिसके बाद में वे घबरा गए थे और उन्होंने उनका गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन पुलिस का मानना है कि जब लड़की का अपहरण किया गया तो उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी। लड़की अथेना स्टैंड की लाश उनके घर से 17 किलोमीटर दूर उनके गायब होने के 2 दिनों बाद नग्न अवस्था में मिली थी। फिजी के एक वकील सिम्योने वालेनेटामुआ ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि उनके मुवक्किल पर सेना के 5 अफसरों ने हमला किया है। वालेनेटामुआ का कहना है कि उनके मुवक्किल जिन पर मिड रोड हाउसिंग नंबुआ में 20 वर्षीय एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप लगा है, जिन्हें एक सैनिक का बेटा बताया गया है। वालेनेटामुआ का कहना है कि उनके मुवक्किल से नंबुआ पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही थी, उसी दौरान मिलिट्री ऑफिसर्स नंबुआ पुलिस थाने गए और उनके मुवक्किल पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है।
5: स्पोर्ट्स न्यूज।
6: वरीज खिलाड़ी लूट मैटकाफ ने टीम में अपने भविष्य को लेकर सवाल किया है। 27 वर्षीय खिलाड़ी मैटकाफ ने क्लब के साथ में अपने कॉन्ट्रैक्ट को साल 2028 तक के लिए बढ़ा लिया है। पिछले साल जून में घुटने में लगी चोट के बाद में अब उनकी वापसी इस सीजन में हुई है। उन्हें NRL के राउंड 4 में वेस्ट टाइगर्स के खिलाफ मैच के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद में वे 3 मैचेस नहीं खेल पाए हैं। उनकी जगह टाना बोयर और चैनल हैरिस तावेटा ने अच्छा खेल दिखाया है, जिसके बाद में मैटकाफ को पिछले हफ्ते वाले मैच के लिए बेंच पर रखा गया था। अब वे जानना चाहते हैं कि क्लब के साथ में उनका क्या भविष्य है।
5: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट। लुकिंग टू मेक योर ब्रांड हर्ड ड्यूरिंग द बिजीएस्ट आवर्स ऑफ द डे।
9: Auckland City Centre से Northern Motorway Constellation 46 minutes, Northwestern Mersey 41 minutes, Southern Motorway Manukau 58 minutes और Airport 42. Wellington में City Centre से Porirua City Centre 22, State Highway 2 से Lower Hutt Central 30, Eastbourne 42 और Airport 16.
5: Sponsor Radio Tirana's Traffic Report, one of our most listened to segments during 6 a.m. to 9 a.m. and 3 p.m. to 7 p.m.
10: Trina Drive. Turn a driver.

0: आज एक बार फिर बॉयज हमारे साथ में रहेंगे। बॉयज में वो भाई साहब जो यहाँ पर हमारे जो लोकल टूर्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। सोनल, अभी दो हफ्ते पहले जब हम गए थे क्राइस्टचर्च, द बॉयज यू नो वीकेंड आउट कोरू आवर फ्लाइट, इसके बारे में हमने रेडियो पर भी बहुत बताया, लेकिन व्हाट हैपेंड देयर?
1: आई विल टॉक अबाउट दैट। जब ऐसे हम प्लेन में बैठे एकदम हम यू नो एक्साइटेड कि अभी प्लेन उड़ेगा तो फिर हम कुछ मांगेंगे, और हमने पहले से हम एकदम आगे बैठे हुए थे तो हमने पहले से फ्लाइट अटेंडेंट से चीकली पूछ दिया था कि व्हाट आर वी गेटिंग टुडे, तो उन्होंने रिप्लाई किया था जस्ट टी कॉफी एंड स्नैक्स सर, एंड वी थॉट शी वाज जोकिंग बट शी वाजंट जोकिंग बिकॉज उन्होंने कहा कि दैट ओनली अप्लाइज फ्रॉम फ्लाइट्स बिटवीन 5 to 7 PM। हमारा फ्लाइट वाज 7:05 PM।
0: तो नेक्स्ट वन डीजे, हम भी एकदम एक्साइटेड, फर्स्ट रो में तीन लोग गोड़ पसार के इसे लंबा करके बैठे हुए हैं कि वो होस्टेस वगैरह जो है जब वो बैठे हम तो ठीक है, लेकिन डीजे के लंबे लंबे टांग और वो जो एयर होस्टेस हमारे सामने एकदम बैठे, आई कुड सी दैट दे वे यू नो उनके जो टांग दोनों थे ऐसे एक दूसरे गैप में फिट करके बैठे थे।
2: या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस नो, प्लेन में एकदम आगे बैठो, 1A, B and C, और नो जब ट्रेवल करते हैं इट फील्स लाइक बिजनेस क्लास।
0: और फिर उसके बाद प्लेन में और क्या हुआ, थोड़ी देर में वी ऑलमोस्ट लैंडेड समवेयर एल्स, इसके बारे में भी बातें करेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स जो अभी हाल ही में हमने किया और आने वाले वीकेंड में जो शो में होगा सैटरडे नाइट हंगामा में। आज अभी से लेकर 6 के बीच में डीजे शालेन और सोनल हमारे साथ।

Hey Hamiltonians, guess what? अब आपके यहाँ Hamilton में आ गया है Global Finance. For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing या refinancing के लिए contact करें Global Finance को, जो mortgage के साथ साथ insurance में भी specialize करते हैं. Life, trauma, health insurance, हर चीज के लिए Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577 0888. Global Finance, now in Hamilton. Happy

0: ना हो गर्म या ठंडा, रिलायंस वेंटिलेशन का हाजिर हो जाएगा बंदा। कॉल अस नाउ फॉर अ फ्री कोट ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन मेक्स
1: हैप्पी हेल्दी होम्स। जिंदगी से जब कोई अपना चला जाता है तब सिर्फ सहारे की ही नहीं सहायता की भी जरूरत पड़ती है। सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी ले लेती है। एम्बामिंग, सर्टिफिकेट्स, लाइव स्ट्रीमिंग, पंडित मंडली, ओवरसीज रिपेट्रिएशन, विंस और सबसे अलग बात, अस्थि विसर्जन के लिए इनके पास अपनी बोट भी है। सब कुछ प्रोफेशनली अरेंज किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली $4,299। आज ही कॉल करें 09263-0101 पर।
2: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: अभी जो लोग सफर कर रहे हैं, शायद कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जो एयरपोर्ट की ओर जा रहे होंगे या तो फिर घर की ओर, अभी आप हो ट्रैफिक में हो, एक और ट्रैफिक अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन कभी कभी, एंड इट हैज हैपन क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, कि अब जब हम वो फ्लाइट के बारे में बात कर रहे हैं सोनल, इसमें हम एकदम आगे बैठे हुए हैं, देन वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग उस जगह से, और फिर देयर वाज एन अनाउंसमेंट कि कोई मेडिकल मेडिकल प्रोफेशन के कोई है फ्लाइट में, बोला कुछ गड़बड़ान।
4: यस दैट्स राइट, वो हमने टी कॉफी ले लिया था, 4-5 घरों का सर्विस हो गया था, फिर अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि इफ देयर इज एनी मेडिकल प्रोफेशनल ऑन बोर्ड प्लीज कम एंड सी अस। फिर उसके बाद में एक और एक फ्लाइट अटेंडेंट आई और उन्होंने कहा कि वी गॉट अ फायर फाइटर एंड अ नर्स ऑन बोर्ड,
3: और डीजे को हमने कहा, ऐसे नच करके कहा कि माय वाइफ इज अ नर्स, डज दिस काउंट?
5: मान लो हम लोग केबिन क्रू होते और हमारे फ्लाइट में ऐसा होता तो व्हाट वुड यू डू कैप्टन?
3: वही करते हम जैसे वो लड़की, रिमेम्बर, एक यू नो आगे तो हमारे जो थोड़ा यू नो जो लगभग 31 ईयर्स से फ्लाई कर रही वैसा एक अटेंडेंट, और एकदम एक ऐसी अटेंडेंट थी जो लास्ट ईयर दिसंबर में जिन्होंने शुरू किया था, हम लोग उनसे बातें होते करते यू नो हम वी हैड अ लॉन्ग चैट विद द फ्लाइट अटेंडेंट्स, क्योंकि एकदम आमने सामने हम बैठे हुए थे, तो अचानक से पीछे एक कोई लड़की, जवान लड़की थी, वो आगे आई और आई सो शी वाज क्राइंग।
4: यस शी वाज क्राइंग, शी वाज ट्राइंग टू हाइड द टीयर्स, यू नो जैसे सुख सुख के जैसे होता, ऐसे करके शी वाज ट्राइंग टू होल्ड इट इन, फिर ऐसे उनका मेकअप भी मिट रहा था, यू नो एवरीथिंग वाज हैपनिंग, और उनको सिर्फ पूछा जा रहा था कि आई ओके, काम डाउन, यू नो दिस थिंग्स हैपन, बट शी मस्ट हैव सीन समथिंग विद द आईज, जिस तरह से उनका इमोशन जो है ये बाहर होकर आया, एंड दिस थिंग्स डू हैपन ऑन अ प्लेन। सो लकली आई थिंक वी हैड दैट नर्स ऑन बोर्ड जिन्होंने मॉनिटर किया वो पेशेंट को, नहीं तो लग रहा था कि हम वेलिंगटन में उतर जाएंगे।
3: I was getting happy कि हम शायद कहीं और जा रहे हैं ना,
5: और हम आगे बैठ रहे थे, वी कुड सी यू नो क्या क्या अनफोल्ड हो रहा था, द पैनिक विद द केबिन क्रू एंड ऑल, और वो बड़ा सा व्हाइट वाला बैग जब लेकर गए, हमारा इंटरप्रिटेशन क्या था उसका?
3: डीजे बोले वही भर के लीजिए।
4: डीजे बोले खत्म,
3: वो सोचे बॉडी बॉडी बैग,
4: हाथ भी नहीं हटेगा उसमें, बट या इट वॉज अ वेरी सीरियस मोमेंट, और हम आगे टाइम पास कर रहे हैं ना, अब आगे कुछ हो नहीं रहा है, खाली लोग आ रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, फिर अचानक से हम देख रहे हैं फ्लाइट अटेंडेंट कॉफी भरकर बीग रही है, दूध भरकर बीग रही है, डीजे बोले वाओ, बोले मुझे दे दो दूध, दो दूध।
3: यस यस, फिर अचानक से शी टॉक्स टू द कैप्टन और साथ में उनके फ्लाइट असिस्टेंट जो थे, एंड देन शी गोज इन द कॉकपिट टू एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है। सो कभी किसी प्लेन में आप जा रहे हो उसमें मेडिकल इमरजेंसी हुई, यू नो, एंड इफ यू आर यू नो मेडिकल प्रोफेशन के हो तो यू कम इन वेरी हैंडी इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, बट यस थिंग्स डू हैपन, यू टेक केयर। अभी चलते रहे हमारे साथ, और भी बातें करेंगे द बॉयज इन द स्टूडियो आज शाम हमारे साथ।

0: साली जी, ऑकलैंड फिर कब आओगी?
1: जीजू, मैं तो स्पेशली यहाँ क्राइस्टचर्च से बार बार ऑकलैंड बेकन बीन्स के लिए आती थी, पर आपको पता है अब हमारे यहाँ क्राइस्टचर्च में ही बेकन बीन्स खुल गया है, या एट 268 लिंकन रोड एडिंगटन क्राइस्टचर्च। अब यहाँ पे बेकन बीन्स के डिलिशियस बिस्किट्स, पैटीज, पेस्ट्रीज, केक्स, सब कुछ मिलता है। मैं तो कॉल करके ही अपना ऑर्डर दे देती हूँ 0800-786-101 पे। अब तो यहाँ क्राइस्टचर्च में ही है मेरा बेकन बीन्स।
0: तो हमसे मिलने नहीं आओगी?
2: Need a new sofa? What about a lazy boy recliner? Then don't miss this. It's the final days of Big Save's massive sofa sale. Whatever your style, we have the perfect sofa for you. Get huge savings on three-seater sofas, recliners, lounge suites, corner suites, and lazy boy recliners. Three-seaters from only $6.99, or get two recliners only $9.99. Stock is limited. These sofa deals won't last. Only at Big Save.
3: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।
4: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
3: डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
4: सिंपल, KMB कंस्ट्रक्शन से बात कीजिए। वो घर ऐसे बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है ओकलैंड में, और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल कीजिए 0218748871 पर, या विजिट कीजिए kmbconstruction.co.nz।
5: KMB कंस्ट्रक्शन, घर बनाए बिना स्ट्रेस।
6: शामल सावरे मैं परूं पावरे।
7: चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार।
8: देखिए एक कहानी प्रेम की, एक कहानी कर्तव्य की,

0: बाला बजे तक डीजे सोनल। तो वी वेंट फॉर अ वॉक।
1: सो लकीली जहां पर हम रुके हुए थे वहां पे मैंने पहले से देख लिया था, आई बीन हियर नाउ अ फ्यू टाइम्स, तो मैंने देख लिया था हेगली ओवल, यू नो हेगली ओवल, हेगली पार्क, वेरी फेमसली नोन फॉर द क्रिकेट। जब ब्लैक कैप्स का क्रिकेट होता है या टेस्ट क्रिकेट होता है तो यहां पर वो हेगली नाम से जाना जाता है। बट इट्स नॉट जस्ट दैट स्टेडियम अलोन, वो पूरा बड़ा एरिया, बड़ा पार्क जो है, और उसको दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। एक तो हेगली नॉर्थ है पार्क, दूसरा हेगली साउथ। सो आई सेड लेट्स गो डाउन फॉर वॉक, इट वॉज जस्ट अबाउट अ किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस, सो वी वॉक डाउन। और फिर वहां पर जब हमने नजारा देखा, वाह जो कैप्टन, हाउ डिड यू लाइक द वॉटर?
0: Oh, the pond, water, birds, ducks. But the beautiful thing was, I think Christchurch has a very beautiful autumn. कि वो जो पेड़ यू नो उनमें जो पत्ते उनके यू नो लीव्स हुए ऑल कलर्ड फॉलिंग एंड ब्यूटीफुल, जैसे मोहब्बते वाला सीन की पत्ते ना। हम डीजे को डीजे थोड़ी थोड़ी देर में रुक के वीडियो बना रहे थे, हमने कहा तुम ले जाओ तो, और ऊपर सब वो लीव छोड़ दे, वो लीव फाड़ के निकलना तुम। हाय मैं हूँ आपका डीजे।
2: हाँ वो वीडियो जब तरह ना फेसबुक पर आने लगे हैं, सो यू कैन ऑल्सो गो एंड वॉच दोज, और यू नो ब्यूटीफुल लोकेशन इन क्राइस्टचर्च। सो कुछ हमारे दोस्त है, दे हैव नेवर बीन टू क्राइस्टचर्च, मे बी वी कैन ऑर्गेनाइज अवर फ्रेंड्स टू ओनली।
0: ओह यस यस यस, वी कैन डू दैट। आई वाज लुकिंग एट कि यहां से हम यू नो शुरू करें अपना जर्नी। वी ऑलरेडी प्लान वन फॉर वाइटांगी वीकेंड नेक्स्ट ईयर, कि कैसे हम क्राइस्टचर्च से शुरू करके वील गो डाउन टू टेकापो, वहां पर एक दो रात रुकेंगे एंड देन वी गो डाउन टू क्वींसटाउन।
1: Yep, I think that sounds like a good plan. But अगर आप कभी क्राइस्टचर्च आते हैं, यू डोंट हैव अ प्लेस टू वॉक, यू डोंट नीड नो ट्रायल या कोई माउंटेन नहीं चढ़ना है, आप सिर्फ हेगली ओवल चले जाए और हेगली पार्क नॉर्थ और साउथ का अगर आप चक्कर लगाएंगे 6 to 8 kilometers वैसे ही हो जाएगा एंड यू हैव अ गुड वर्कआउट।
0: यस यस, हमारा तो टोटल हो गया था लगभग 10 एंड देन इट वॉज ब्यूटिफुल, वी सॉ एवरीथिंग, जो जो यहां पर अट्रैक्शन है इन क्राइस्टचर्च वो सब हमने देखा था। अच्छा अभी थोड़ी देर में हम बातें करेंगे बॉयज से, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो नया स्टेडियम जो क्राइस्टचर्च में बना हुआ है, व्हाट वॉज द वाइब लाइक इन क्राइस्टचर्च जब हम गेम्स देखने गए।

0: Auckland and Wellington Traffic Report.
1: Be part of one of the most important and listen to segments on Radio Toronto. The Traffic Report, air during peak hours, 6 a.m. to 9 a.m. and 3 p.m. to 7 p.m.
2: Auckland Main Northern Motorway Constellation 46 minutes, Northwestern Massey 42 minutes, Southern Motorway. Manukau 53 minutes, or Airport 40 minutes. Wellington, State Highway 1, Zipporah River City Centre 25, State Highway 2, Salawa Hutt Central 30, Eastbourne 42, our airport 16 minutes.
1: Increase brand awareness by contacting Ajeshni at 02196-1386 to secure a sponsorship.
3: The boys in the studio थे जिकी शाम और गाने जो आप मुझे बता रहे हो कुछ अपने कलेक्शन के गाने आपको मैं सुनवा रहा हूं ऐसे ही आप बढ़ते रहे हमारे साथ एंड द स्टेडियम द वन न्यूजीलैंड स्टेडियम उनका मौरी भी नाम है आई कांट रिमेंबर दैट सोनल
4: टेकाहा आई थिंक टेकाहा स्टेडियम समथिंग लाइक दैट टेकाहा स्टेडियम है उसका नाम और मैं वर्क सेफ रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि इन द लास्ट जब तीन साल उनको लगा पूरा कंप्लीट करने में इट वाज आल्सो डन विदाउट एनी इंसिडेंट सो एंड इट्स ब्यूटिफुली बिल्ट जब हम अंदर गए हुए थे वी हैड अ नाइस हाफ वे सीट और वी वेंट इनसाइड वी वॉक्ड अप द स्टेयर्स पहले तो हमने वहां पे बोला बाप रे बाप और कितना ऊपर जाना है बट व्हेन वी गॉट देयर जिस तरह का एटमॉस्फेयर द वाइब जो हल्ला हो रहा था चीयरिंग फॉर टीम्स मेक्सिकन वेव हो रहा था सो आई थिंक इट्स वन ऑफ द टॉप नॉच स्टेडियम्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री राइट नाउ
3: ओके डीजे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस
5: आई थिंक वो डनिटन को भी इन्होंने बीट कर दिया क्योंकि कवर्ड स्टेडियम और अंडर द रूफ ये मैच हो रहा है एंड आई रिकॉल दैट गेम जो चल रहा था सोनल बगल में बैठ रहे थे ही वाज चीरिंग हिज टीम ऑन एंड देन अचानक से आवाज मैंने सुना बोले व्यायाम लग गए बोल
3: खाली रेफरी ऊपर बैठ गए बोले क्या होगी एंड देन आई सेड सोनल वो स्पाइडर कैमरा है बोले हाँ स्पाइडर कैमरा नहीं स्पाइडर कैम
4: में बोल लग गया था सो द रेफरी कॉल्ड इट बैक बट या इट वाज गुड सो एक अच्छा बात यही है कि डीजे ने कहा इवन दो डनीडन स्टेडियम इज कवर्ड साइड में वो खुला रहता है सो द कोल्ड एयर डस फ्लो इन बट दिस इज फुली लाइक क्लोज्ड ऑफ और अंदर वेंटिलेशन है हमने जैसे ऊपर ताका बड़ा बड़ा जो फैन नहीं है ऐसे ऐसे चल रहा था छक छक छक छक छक छक छक छक
3: एंड व्हेन वी वेंट डाउन टू डू आवर शॉपिंग यू नो गेम के बाद जो आएंगे यू नो वी हैड द ओवन ऑन थ्रू आउट और बैठ के सोच रहे हैं कि लौटते लौटते ये जो हमारा एयरबीएनबी बिल्डिंग बचेगा कि नहीं क्योंकि वी लेफ्ट द मीट इन द ओवन वो धीरे धीरे पक रहा था लेकिन व्हेन वी वेंट टू बाय डाउन यू नो द ग्रोसरी फॉर आवर शॉपिंग जो हम कर रहे थे डीजे रिमेंबर दैट वी डिडंट आस्क द नेम्स ऑफ दोज लेडीज जिन्हें थोड़ा से बोले बॉयज आर यू फ्रॉम तराना
5: या क्राइस्टचर्च में वो जो इंडियन शॉप में हम गए हुए थे वहां पर काफी वैरायटी भी हमने देखा और अचानक से किसी ने हमसे कहा आर यू फ्रॉम रेडियो तराना सो दैट वाज अमेजिंग क्राइस्टचर्च में लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं मोस्टली ऑन रोवा ऐप आई बिलीव सो इफ यू आर इन क्राइस्टचर्च टुडे यू डू सेंड अस अ मैसेज और कहां पर आप हैं ये भी बताते रहे मे बी नेक्स्ट टाइम विल कम डाउन एंड कैच अप
3: Oh yes, what was the name of the shop जहां पर हम गए थे? It was nice, बहुत ही neat और बहुत ही बड़ा, all the Indian spices and everything there.
4: Yeah, Global Fresh on Blenheim Road, Middleton में वो shop हम गए हुए थे. वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा. बाहर हमने देखा था एक barber shop छोटा वाला. Then we saw a little bacon biz. And then जैसे अंदर जाते हैं, they've got everything there. They've got a butcher, they've got sections of frozen stuff. आपको dry goods में भी सब कुछ मिलेगा. Cosmetics aisle, पूरा snacks aisle है, भुजा से लेकर twisties, bongo, जो आपको चाहिए. So you can go and check it out if you're in Christchurch as well.
3: Okay, अभी एक और बार बॉयज से बातें करेंगे और नेक्स्ट वाला न्यूज 6 पर आपके लिए रहेगा.

0: डिस्काउंट फर्नीचर पापा टॉय में चल रहा है अमेजिंग स्पेशल फ्रॉम बेड्स डाइनिंग स्वीट्स एंड लाउंज स्वीट्स खरीदिए ब्यूटीफुल 7-पीस डाइनिंग स्वीट या क्वालिटी कॉर्नर लाउंज स्वीट और लग्जूरियस क्वीन पिलो टॉप पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस एट रीजनेबल प्राइस क्वालिटी फर्नीचर लो प्राइस में एल्स डिस्काउंट फर्नीचर लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल 355 ग्रेट साउथ रोड पापा टॉय
1: फार्मर्स हैज द बेस्ट गिफ्ट्स फॉर मॉम सरप्राइज हर विद अ न्यू फ्रेग्रेंस और ब्यूटी गिफ्ट कीप हर कोजी विद अ न्यू रोबन स्लीपवेयर ट्रीट हर विद सम न्यू स्टाइलिंग टूल्स और अ गॉर्जियस डिफ्यूजर और कैंडल सेलिब्रेट मॉम दिस मदर्स डे फार्मर्स योर डिपार्टमेंट स्टोर
2: मेकर्स Weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's Weekly Deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
3: तराना पर अगर आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो आपको लगता है कि रेडियो पर नहीं होना चाहिए तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं पहले हमारे पास info@tarana.co.nz पर लिखें। अगर आप हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप info@bsa.govt.nz पर ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी को लिख सकते हैं वैसे यहाँ तराना पर हमारी कोशिश यही होती है कि सारे प्रोग्राम्स अच्छे स्टैंडर्ड के हों
4: As I said, 6 पर नेक्स्ट वाला न्यूज रहेगा द बॉयज अभी भी हमारे साथ हैं तो वीकेंड में लुक फोर्ड करते हैं कि डीजे शालिन शो सुबह सुबह और फिर रात वाला प्रोग्राम द बॉयज गेट टुगेदर ऑन सैटरडे नाइट हंगामा डीजे नया वाला जिंगल बाप रे बाप
5: या आई थिंक इट्स AI जनरेटेड क्योंकि यू नो विद इन मिनट्स में बन गया बट जो वाइब उसमें जो है फीलिंग जो है आई थिंक पीपल आर लविंग इट अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं एंड फॉर द डीजे शालिन शो वन एज वेल और सैटरडे नाइट हंगामा में सो थिंग्स आर चेंजिंग
4: Oh yes, and what are we looking forward for? Saturday night hangama, the show of the week. Yeah. Sonal.
6: Well, kal se udhar kuch exciting Super Rugby matches shuru ho jayenge. The Blues are travelling down to play the Crusaders tomorrow night in Christchurch, the same stadium mein, jiske baare mein abhi thoda der pehle hum baatein kar rahe the. Still receiving some birthday wishes. Tuesday ko mera birthday tha, so still receiving some good wishes from all the people. Gifts bhi aa rahe hain, nana prakar ke, jaise VB ke aate hain, to usi tarah se. So yeah, thank you very much for all your wishes. And over the weekend, kya kuch ho raha hai aane wale दिनों में आई नो अब अलग अलग जगह पर गिरमिट फंक्शंस ये होने लगे हैं सो नेक्स्ट वीकेंड उधर फिजी गिरमिट फाउंडेशन का जो प्रोग्राम है ये रहेगा 16th ऑफ मई को तो उसके फॉलोइंग वीक हमारा एक रोटरी क्लब का भी 23rd ऑफ मई को गिरमिट जो फंक्शन है ये होने वाला है एंड देन ऑन द शो ऑफ द वीक वी विल बी टॉकिंग अबाउट फनी स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड बातें करेंगे कि कैसे हमारा ये कोरोना फ्लाइट गया जस्ट लाइक वी टॉक अबाउट टुडे प्लेन में एक्सपीरियंस स्टेडियम का एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स कुछ दोस्तों से कुछ लिसनर्स से भी हम बातें करेंगे ओवर द वीकेंड
4: और इफ आई गेट अ चांस टू बी ऑन द शो इस सप्ताह लोगों को ये भी बताएंगे कि अचानक से मैं कुछ कर रहा था और फिर मैंने देखा द बॉयज वर हैविंग अ वेरी बहुत ही सीरियस डिस्कशन और मैथमेटिक्स भी उसमें इन्वॉल्व था डीजे एंड सोनल क्या बातें कर रहे थे वील टॉक अबाउट इट ऑन द शो ऑफ द वीक सैटरडे नाइट हंगामा अभी आइए कुछ और गाने लेकर आते हैं और एक और ट्रैफिक अपडेट बस थोड़ी ही देर में

आना दो गानों के बाद न्यूज आने का है। दिलीप सेन समीर सेन के गाने भी हर घंटे की समाप्ति पर हम आपको सुनवा रहे हैं। तो गानों को ढूंढ रहा था, एक गाना इसका जो बोल है मैंने देखा, आई बिलीव ये भी आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग कव्वाली के तौर पर, कव्वाली वाला गाना, लेकिन फिल्म के लिए डिफरेंट वर्जन इसका जो है ये तैयार किया गया। अभी वो गाना आपको हम सुनवाने जा रहे हैं और 6 पर नेक्स्ट वाला न्यूज आपके लिए हम लेकर आएंगे। इतिहास के पन्नों से और कैप्टन की किताब से में कुछ जानकारी, इंटरेस्टिंग जानकारियां, ये हम शेयर करेंगे 6 बजे के न्यूज के उस पार।

0: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
1: कौन?
2: मैं यमराज हूँ।
1: ओह जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
2: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी?
1: हाँ, मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक, और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
2: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
1: ओके, थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर।
0: Ashik Homes Limited, for the first time, rent to buy. Fantastic opportunity to own a brand new home. If you have Kiwi Saver and some debt, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue. Finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz. Hey everyone, मैं हूँ नेहा, और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर।
3: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
0: पापाटोय, फ्लैटबुश और पापाकुरा के बाद अब DH सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन। दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन। ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग।
4: क्लीन सिटी सेंटर से नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन तक 40 मिनट्स, नॉर्थ वेस्टर्न मेसी 47 मिनट्स, सदर्न मेनिकाउ तक 58 मिनट्स और एयरपोर्ट 49। वेलिंगटन सिटी सेंटर से थर्सडे की शाम पोरीरुआ तक 23, लवाहट 22, इसबोर्न 40 मिनट्स और एयरपोर्ट 21 मिनट्स।
0: फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में। DH सुपरमार्केट नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड।
5: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
6: ब्रॉट टू यू बाय KMB कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर।

0: माँ को सब पता होता है, हमारे दिल और दिमाग का नक्शा इनके जहन में छपा होता है। शायद इसीलिए हमारी खबर हमसे ज्यादा इन्हें होती है। हाँ, कभी खिटपिट भी होती है, डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा मीठा तो कभी कड़वा भी बोल देती है। फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने लाकर खाने की थाली रख देती है। इनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है, माँ को सब पता होता है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। रेडियो तराना टाइम चेक।
2: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
3: रेडियो तरना पर अभी घड़ी में 6 बज चुके हैं। नमस्ते, मैं हूं आपका कैप्टन। अभी एक और घंटे तक हम आपके साथ में रहेंगे।
4: दिस इज तराना न्यूज।
5: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। देश के सबसे बड़े सोलर फार्म का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो अटाउपो और नेपिया के बीच में बनाया जा रहा है। टेराहुई सोलर फार्म को स्टेट हाईवे 5 के समीप बनाया जाएगा। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट नोवा एनर्जी और मेरिडियन एनर्जी का है। इस सोलर फार्म को 800 हेक्टर फार्मलैंड पर तैयार किया जा रहा है। ये फार्मलैंड टाउपो से आधे घंटे की दूरी पर है तथा इस प्रोजेक्ट को 2 स्टेजेस में पूरा किया जाएगा। सोलर फार्म में 7,700,000 सोलर पैनल्स फिट किए जाएंगे। इसकी मदद से 1,100,000 घरों में बिजली सप्लाई की जा सकेगी। कैंटेबरी से लेकर तारानाकी के बीच में 6 ऑरेंज हेवी रेन वार्निंग दी जा रही है। ये चेतावनी शनिवार की सुबह तक के लिए लागू है। तारानाकी, वेलिंगटन और मार्लबोरो सहित कैंटेबरी के लिए ऑरेंज स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग भी दी जा रही है, जहां पर झोंकों के साथ में 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल सकती है। हेवी रेन वार्निंग टेस्मन, ब्यूला, वेस्टलैंड और कैंटेबरी सहित ओटागो के लिए लागू है। मौसम दफ्तर के मुताबिक देश के सेंट्रल और सदर्न इलाके में 30 घंटे तक बारिश होगी तथा मेट सर्विस ने तारानाकी और आसपास के इलाकों के लिए 16 अलर्ट्स जारी किए हैं। लेबर पार्टी की डेप्यूटी लीडर कमल सेपोलोनी का कहना है कि ऑकलैंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर जाने के लिए लेबर पार्टी जिम्मेदार नहीं है। रेडियो तराना से बातें करते हुए लेबर पार्टी की डेप्यूटी लीडर कमल सेपोलोनी ने कहा कि इसके लिए कॉलिशन सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि कॉलिशन सरकार के नेतृत्व में ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में धीमापन आया है, जिससे 20,000 लोगों की नौकरी चली गई है।
6: The cancelling of infrastructure and building projects that were already underway, that's resulted in 20,000 fewer jobs in the construction industry, which has played a big part in the increase in unemployment that we're seeing, particularly in a region like Auckland. We were promised before the last election that the cost of living would improve, that New Zealanders would be better off. They are not better off. And in fact, overall, we've got 40,000 fewer Kiwis in work under this government, which is a real indication of the fact that the country is going backwards.
5: Auckland mein pichle 12 saalon mein unemployment rate sabse zyada 6.6% record hua hai. कोलकाता के पास सुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड में सुवेंदु अधिकारी के पीएस भी घायल हुए हैं। घटना के बाद से ही स्थानीय पुलिस हमलावरों की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में हमलावरों की कार और बाइक बरामद कर ली है। इस हत्याकांड को लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी का भी पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने इस हत्याकांड को एक सोची समझी हत्या बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां से गुंडों को खत्म करेगी। नेशनल फार्मर्स यूनियन ने गन्ने के ढुवाई के लिए रेल लाइन सर्विस को बंद कर देने वाले फैसले पर सवाल उठाया है। फिजी शुगर कॉरपोरेशन के अनाउंसमेंट के मुताबिक तापुआ से मबा के बीच में रेल लाइन सर्विस को बंद किया जा रहा है। रेल लाइन सर्विस को बंद करने के लिए एक एप्लीकेशन शुगर इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल के पास में भेजा गया है। इस बीच गन्ने के किसानों ने प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को लेकर के गहरी चिंता व्यक्त की है। नेशनल फार्मर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी महेंद्र चौधरी का कहना है कि इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि अभी हाल में सरकार ने अनाउंस की थी कि रेल लाइन सर्विस की मरम्मत की जाएगी। चौधरी का कहना है कि अभी हाल में FSC ने $1.7 million का ग्रांट रेल मेंटेनेंस वर्क के लिए दिया था तथा इस पर काम पिछले साल सितंबर में खत्म हुआ है। NFU का कहना है कि शुगर केन क्रॉस काउंसिल भी रेल लाइन सेवा को बंद करने के खिलाफ है।
4: स्पोर्ट्स न्यूज़।
5: क्रुसेडर्स रग्बी टीम के पूर्व खिलाड़ी और न्यूजीलैंड रग्बी के इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद पिछले छह महीनों से संभालने वाले स्टीव लैंकेस्टर को प्रमुख रूप से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। लैंकेस्टर साल 2020 से न्यूजीलैंड रग्बी एग्जीक्यूटिव टीम में है तथा पिछले छह महीनों से वे इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भूमिका निभा रहे थे। न्यूजीलैंड रग्बी के चेयरपर्सन डेविड केक ने पुष्टि की है कि स्टीव लैंकेस्टर को न्यूजीलैंड रग्बी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। वे पिछले 20 सालों से स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड रग्बी सहित क्रुसेडर्स रग्बी कनाडा और नेटबॉल न्यूजीलैंड के साथ में भी काम किया है।
7: Auckland and Wellington traffic report.
8: Kashish Desi Ghee from Kashish Food. Shuddh taste aur rich aroma ke saath. Proudly, New Zealand mein banaya hua.
9: Auckland City Centre se Northern Motorway Constellation 35 minutes. Northwestern Massey 45 minutes. Southern Motorway Manukau 55 aur Airport 45. Wellington mein State Highway 1 se Porirua City Centre 24. State Highway 2 se Lower Hutt Central 30. Eastbourne 35 aur Airport 16.
8: Har khane ko banaye aur bhi tasty Kashish Desi Ghee ke saath. Kashish Foods, eat better, live better. Ab nationwide stores mein available.
10: Turn a driver.

आप दोस्तों से बातें अभी नहीं करेंगे, ओके? आप मैसेज भेज सकते हो, गानों की फरमाइश आप नहीं अभी ना भेजना, जो बाकी है वो अभी मुझे पूरा करना है, अदरवाइज आपसे ले लेंगे और फिर वो पूरा नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा बॉस। तो अभी आप गानों का मजा लीजिए जो गाने अभी बाकी हैं इस प्रोग्राम में, जैसे कि ये वाला गाना, वन ऑफ माई फेवरेट, सभी आपको मैं सुनवाने जा रहा हूँ। इस तरह के गानों से आपका मनोरंजन हम करवाएंगे और थोड़ी देर में कैप्टन की किताब से भी हम लेकर आएंगे, और इसके अलावा 6:30 पर उन दोस्तों को याद करेंगे जिनका आज बर्थडे है। हमारा दस्तूर के साथ में आज जो लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं उनको हम हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा हमारा दस्तूर, तो लोगों ने गूगल भी करना शुरू कर दिया था। चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, गाना सुनिए।

0: Chemist Warehouse has now opened in Fangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparoa next to the Coast Shopping Mall.
1: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices, they've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day. फ्यूल का दाम रोज बढ़ रहा है और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है इफिशियंट ड्राइविंग का और वेस्ट सिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, इफिशियंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो एमिशन, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले. For more information, visit westcityautogroup.nz or search on socials for West City Auto Group.

0: इंटरेस्टिंग है आज वाला भी भावनाएं, आई थिंक इट्स टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, और इम्पोर्टेंट है समय से ज्यादा फीलिंग्स। जो लोग जेन्युइनली कुछ करते हैं, दिल से करते हैं, उनकी फीलिंग्स हिट इजिली हो जाती है, और कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं तो उनको फीलिंग के बारे में पता ही नहीं। फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है बॉस, सेल्फ रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू। ऐसे ही हल्के में लोगे तो कुछ नहीं होगा। सुनिए
1: कैप्टन की किताब से,
2: आइए सुनते हैं समथिंग इंटरेस्टिंग समथिंग सेंसेशनल कैप्टन की किताब से।
3: किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, इसीलिए जो ना समझे उन पर खर्च मत किया करो।
1: कल शाम भी इसी समय कैप्टन की किताब से हम पढ़ेंगे एक और पन्ना।

0: हैनिबल होम्स वाली गुड़िया इतनी बड़ी हो गई।
1: हाय, मैं हूँ गुड़िया, भाई गुड़िया जिसके भैया ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था। अब मेरे पास मेरा अपना रूम है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। Thanks to Indelible Homes. Thank you. See you.
0: नया घर बनाना हो या सब डिवाइड करना हो, Indelible Homes. Phone 0800-233-111.
2: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: Craving हो रही है.

0: natural yogurt.
1: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
2: यार मुझे फिजी जाना था।
3: कब जाना है?
2: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
3: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
2: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
3: I think you should contact Coastal Rental Cars. इनके पास family cars, SUVs और सभी luxurious गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी conditions में।
4: Coastal Rental Cars. Visit coastalrentalcars.com.fj or for bookings call on 00679-652-0228.
3: Explore Fiji the coastal way.
5: Today in history.
6: आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या कुछ खास हुए हैं? ओके, अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी। ग्रेट लीडर्स की हत्या होती है और आपने भी देखा होगा, इंदिरा गांधी से लेकर महात्मा गांधी को ले लो, और साथ ही साथ शायद यही चक्कर में फेक न्यूज और फेक लोगों को ऐसे अटेम्प्टेड, आई डोंट नो व्हेदर इट्स ट्रू और नो, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने आप को कर दिया था ना कि मैं भी ग्रेट लीडर्स पर इस तरह का आक्रमण होता रहता है, अपने आप को उनके तरह पेश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं देखो आई एम अ वेरी ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर कहाँ का ग्रेट लीडर, जब भी कोई पेट्रोल पंप की ओर जाता है कहाँ कहाँ पर फ्लाइट्स अभी मैं बुक कर रहा हूँ, फेयर्स इतने ऊपर हो गए बॉस सभी, जरा सोचिए इसके बारे में। एनीवाइज, आज ही के दिन अब्राहम लिंकन के ब्लड स्टेन्स, उनके बोन्स, हेयर और साथ में उनके जो कपड़े जिस पर उनका खून लगा हुआ था, यूनिवर्सिटी हॉपकिंस, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यह अनुमति दी गई थी कि लो और देखो कि उनका क्लोन बनाया जा सकता है या नहीं उनके डीएनए से। आज ही के दिन एक बहुत ही बड़ा वाला पर्ल, वो जो होता पर्ल पाया जाता है पानी में, वो शेल्स में होते हैं, 6.4 किलोग्राम्स का एक पाया गया था फिलीपींस में। फार आउट ब्रो, पर्ल है ऐसे ही, जरा सोचे आप ऐसे कुछ मिट्टी वगैरह खोद रहे हो, आपको बड़ा गोल्ड नगट मिल जाए, पर्ल मिल जाए समुद्र में। ओके, उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा, पानी से जिनको डर लगता है वो कहाँ जाएंगे पानी के नीचे। नेशनल टूरिज्म डे है आज और वर्ल्ड पासवर्ड डे है, नेशनल डे ऑफ प्रेयर भी आज है, और इसके अलावा आज आपका बर्थडे है। हु इज द लेडी, आई फॉरगॉट हर नेम मैन, अमायरा दस्तूर के साथ आप भी अपना बर्थडे मना रहे हो, आपको भी हैप्पी बर्थडे।

0: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरो कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंगसाइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09815-3811। डी कैरल कर्टन्स
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply. Yes, sir.

0: Chasers Abuja Mix ka full range dekhe on chasers.co.nz. Chasers, feel the flavor.
1: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए. फ्लाई विद एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया, और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ. तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे.
2: मेक योर बजट स्ट्रेच फर्दर विद Mitre 10. Freshen up the walls with Accent Interior Paint 10 litre, now 119. Plus get 20% off assorted Nuvo tapware. T's and C's apply. Grab these great deals and more in store or online at Mitre 10.
3: Auckland and Wellington traffic report.
1: Pacific mein apne family and friends ko bheje Digicel ka $20 ya usse zyada ka top up, ya kare cash transfer $300 ya usse zyada ka inki kisi bhi partner website se My Cash Wallet ke saath. और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस.
4: नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन 30 मिनट्स, नॉर्थ वेस्टर्न मेसी 40 मिनट्स, सदर्न मोटरवे पर मैनिकाउ 50 मिनट्स और एयरपोर्ट 40 मिनट्स. स्टेट हाईवे 1 से पोरुरुवा सिटी सेंटर 22, स्टेट हाईवे 2 से लवाहट सेंट्रल 25, इस्बोन 30 और एयरपोर्ट 18.
1: बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ 15 $500 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजीसेल. तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक.

आज 7 तारीख ऑफ मई है, आज हमारा दस्तूर का बर्थडे। Okay, काफी लोगों ने गूगल कर लिया होगा हमारा दस्तूर के बारे में, ठीक। एनीवेज, आज और भी दोस्त हैं अपना बर्थडे मना रहे हैं। आज रिधि का भी बर्थडे है, रिधि 16 साल की हो गई हैं। डैडी विनल, मम्मी रमिता, बहने निशी और खुशी की ओर से खास प्यार मिला है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं सभी ने याद किया है। पापू और अम्मा की ओर से प्यार आशीर्वाद मिला है, रोमित एंड फैमिली और साथ में रोनिटा एंड फैमिली, रोशिका रोनल और साथ में खूबसूरत रूही की ओर से भी आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे रिधि। आपकी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड श्रेया की ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे। इनके साथ में आज इंदिरा प्रसाद को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। राधे नंद चौधरी, आज आपका बर्थडे है ब्रदर, हैप्पी बर्थडे। सरिता हुसैन का बर्थडे है, भीम और रोशनी सेन आप में से किसी का बर्थडे है, और साथ ही साथ यनकट रेड्डी, नमस्कार आज आपका भी बर्थडे है यनकट रेड्डी, और साथ में आज संगीता नायडू का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे संगीता। और इनके साथ में आज सुबह से हमारे साथियों ने हमारे कुछ दोस्तों को हैप्पी बर्थडे विश किया, लेट मी लुक फॉर देयर नेम्स। आज सिद्धार्थ और उनकी पत्नी शिवांगी पहले अपनी शादी की सालगिरह ये मना रहे हैं, 12th वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। सिद्धार्थ शिवांगी आपको बहुत सारा प्यार। दे मूव टू मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वहां पर भी रेडियो तराना सुनते रहते हैं। क्या यू द कपल जो एक बार बंद बिल्डिंग में किसी तरह से घुस के आ गए थे मुझसे मिलने के लिए, क्या आपको बहुत सारा प्यार। श्रद्धा की ओर से, शिवानिया की ओर से, शिवन की ओर से, रीता की ओर से, डॉक्टर प्रणव कुमार की ओर से, निर्मला और साथ में संदीप, दिव्या, त्रिशन और साथ में राहुल, हिमांगी और सौम्या की ओर से खास प्यार। हमारी ओर से भी सिद्धार्थ और शिवांगी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं आप दोनों को। आज भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आशा वाधवन सनीवेल में आपका बर्थडे हैप्पी बर्थडे, लिनफील्ड में बरकतलाल बरकती खोजा जी इनका बर्थडे है, बरकती खोजा और आशा वाधवन आप दोनों को भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स ने हैप्पी बर्थडे विश किया है। साचिव राम का भी आज बर्थडे है, साचिव हैप्पी बर्थडे, 18 साल के हो गए हैं और बहुत सारा प्यार मिला है शमी और शलेन की ओर से, ये मम्मी डैडी हैं होल्डन प्लेस मैनिकाउ में, और इनके साथ में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया फिजी यूएसए परिवार वालों ने याद किया है। साचिव कॉन्ग्रेचुलेशन, बेकन बीन्स वाला केक भी आपने जीता है। और कल जो लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं मेक श्योर अपना मैसेज हमारे पास भेजें, कल भी इसी समय हम आ जाएंगे हैप्पी आवर में और बिफोर द गेम स्टार्ट टुमारो आपको हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए।

0: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
1: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
1: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
3: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255500। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds, and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at iFurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton, and Christchurch. iFurniture. Better, cheaper, smarter.
5: चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वेस्ट सिटी GWM हवेल। हवेल की हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पर डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेला और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। For more information, visit westcityautogroup.nz or search on socials for West City Auto Group.
6: राजस्थान की मेहमान नवाजी के तो क्या कहने, और अब वही मेहमान नवाजी और वही स्वाद आपको मिलेगा यहाँ ऑकलैंड में at Shree Restaurant. Authentic Rajasthani and delicious Indian vegetarian cuisine. राजस्थान की मशहूर दाल बाटी चूरमा, चाट आइटम्स एंड मेनी अदर स्नैक्स एंड फुल मील्स। ऑकलैंड के मशहूर शेफ रामेश्वर आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं टू द श्री रेस्टोरेंट एट 11 bar 726 ग्रेट साउथ रोड मानिकाव ऑपोजिट रेनबोज इन। और यहाँ फंक्शंस होस्ट करने के लिए भी बड़ी जगह अवेलेबल है। श्री रेस्टोरेंट ओपन 6 days, क्लोज्ड ऑन वेंसडे।

थर्सडे है बॉस, कल फ्राइडे और ये वीकेंड। ओके, मैंने भी कुछ सोच रखा है इस वीकेंड के बाद। नेक्स्ट वीक जब हम आपसे मिलेंगे, इट विल बी डिफरेंट। ओके, एकदम डिफरेंट। आई विल ट्राई टू गेट डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, डिफरेंट मोड में, और साथ में डिफरेंट दोस्तों की तलाश में। यही हफ्ता है, बस 2-3 दिन, और फिर उसके बाद विल डू समथिंग डिफरेंट। अभी इन दो गानों का मजा लीजिए। न्यूज आपके लिए संजेश लेकर आएंगे इन दो गानों के बाद में।

0: Auckland and Wellington traffic report.
1: Partner with Radio Tirana and reach commuters across Auckland with our traffic report sponsorship.
2: Auckland mein city center se northern motorway constellation tak 25 minutes, northwestern Massey tak 35 minutes, southern motorway Manukau tak 45 minutes aur airport 35. Wellington city center se state highway 1 se Porirua city center 20 minutes, state highway 2 se Lower Hutt Central 25 minutes, Isborne 30 aur airport 18.
1: Your brand will feature during morning and afternoon peak hours, ensuring maximum exposure.
3: Drawing inspiration from urban communities around the world.
4: We present Peak O Toy Toy, a brand new urban development in Papatoetoe. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
3: 5 minutes from New World, eateries, schools, City Rail Link, Purinui Bus Interchange and major motorways.
4: Join the new community. Selling now. Find out more at peakotoetoe.nz.
3: That's PIKOTOETOE.NZ.
2: जिंदगी से जब कोई अपना चला जाता है तब सिर्फ सहारे की ही नहीं सहायता की भी जरूरत पड़ती है. सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी ले लेती है. एम्बामिंग, सर्टिफिकेट्स, लाइव स्ट्रीमिंग, पंडित मंडली, ओवरसीज रिपेट्रिएशन, विंस और सबसे अलग बात अस्थि विसर्जन के लिए इनके पास अपनी बोट भी है. सब कुछ प्रोफेशनली अरेंज किया जाता है. स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली $4,299. आज ही कॉल करें 09263-0101 पर.
3: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ. बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज. तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश. टीज एंड सीज अप्लाई.
5: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए. Fly with Air India from New Zealand. Easy return connections via Australia or Singapore to India. Or फिर seamless travel within India. Delhi हो या Amritsar, Mumbai हो या Ahmedabad. Air India connects you to every corner of India. वही अपनी भाषा, वही अपना जैसा स्वाद, वही friendly Indian hospitality के साथ.
3: तो अगली बार घर का सफर हो, fly Air India. For more information, visit your local travel agent today.
6: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन.
7: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन. नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 0218748711 पर.

0: या गम का नकाब हंसी पर, या हजार बार समझाएं मां सच्ची कुछ नहीं हुआ है। अच्छा बेटा, फिर मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? इन्हें कही अनकही हर बात का अंदाजा होता है, माँ को सब पता होता है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: रेडियो तराना, टाइम चेक, टाइम चेक।
3: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स। Phone 0800-233-111. Website indelibleholmes.co.nz.
4: थर्सडे की शाम ढल रही है और इस समय हमारे स्टूडियोज में 7 बज चुके हैं। खबरों का वक्त हो गया, कल वेदर कैसा रहेगा ये भी बताएंगे थोड़ी ही देर में।
5: दिस इज तराना न्यूज।
6: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। नए सिटीजनशिप टेस्ट के तहत एप्लीकेंट्स को टेस्ट पास करने के लिए 6 मौके दिए जाएंगे तथा पास रेट 75% रखा जाएगा। इंटरनल अफेयर्स की ओर से जो टेंडर जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 2 पीरियड्स जो कि 30 वर्किंग डेज के अंदर होंगे में एप्लीकेंट्स को सिटीजनशिप टेस्ट पास करने के लिए 6 मौके दिए जाएंगे। अगर 6ठी बार भी व्यक्ति फेल हो जाते हैं तो उनके लिए कुछ विकल्प होंगे, जिनमें एक तो ये होगा कि वे अपने सिटीजनशिप एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकेंगे, या फिर वे चाहेंगे कि मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स उनकी अर्जी पर गौर करे। यह टेस्ट 45 मिनट्स का होगा तथा 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अभी फीस तय नहीं किया गया है, लेकिन जो टेंडर जारी किया गया है उसके मुताबिक हर एक कैंडिडेट को $24 इस टेस्ट के लिए भरना होगा। अंडर 16 और ओवर 65 को इस एग्जाम से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, यानी कि उन्हें ये एग्जाम नहीं करना पड़ेगा। मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स ब्रूक वैन वाल्डन का कहना है कि वह चाहेंगे कि जो कंपनी ये टेस्ट करवाती है वो ये देखे कि कोई चीट ना करे। इसके साथ ही नए नियम लागू होने से पहले जो लोग सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर देंगे उन पर ये नया नियम लागू नहीं होगा। लेबर पार्टी की डेप्यूटी लीडर कामेल सेपलोनी का कहना है कि वह ये नहीं समझ पा रही है कि क्यों इस तरह के प्रस्ताव को लाया गया है।
7: I don't even understand why, you know, this is being proposed. You know, even some of the expectations around English language, you know, for me personally, you know, I had a father that came here in 1964 from the Pacific Islands. He didn't have any English. But he learned it very quickly, and he contributed a great deal to this country.
6: प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से सिटीजनशिप टेस्ट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और यूके में कई सालों से ऐसा हो रहा है तथा वे इसका समर्थन करते हैं।
8: And it's probably not a bad thing that actually New Zealand, you know, new New Zealanders are positively ascribing, you know, some pretty basic stuff about women's rights.
6: लेबर पार्टी की डेप्यूटी लीडर कामेल सेपलोनी का कहना है कि कॉलिशन सरकार में शामिल एक्ट और न्यूजीलैंड फेस्ट पार्टियां ये साबित करना चाहती हैं कि किसके पास में बेहतर इमिग्रेशन पॉलिसी है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक्ट पार्टी ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट की है। एक इंटरव्यू में जब हमने कामेल सेपलोनी से पूछा कि क्या वो सोचती हैं कि कॉलिशन सरकार स्थिर है, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ये नहीं पता चलता कि कॉलिशन पार्टनर्स सरकार में है या वे एक दूसरे के विपक्ष में है।
7: They have been eating each other in recent weeks in particular, you know, even in question time in the House. Sometimes you have to wonder who the opposition is because you've got Nicola Willis and Winston Peters going each other when they are supposed to be part of the same government. More recently, you've had Erica out there condemning David Seymour and the ACT Party's policy on immigration. So they haven't been able to hold it together. We already saw them cracking.
6: पुलिस मंत्री मार्क मिचेल और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने एक महिला से उसके फेसबुक पोस्ट को लेकर के क्यों बात की। रिनी रोज स्वेंके ने पिछले महीने के अंत में एक सेल्फी पोस्ट की थी जो किसी सार्वजनिक स्थान पर ली गई प्रतीत होती है। उनके बाएं ओर भारतीय दिखने वाले 2 पुरुष हैं, जिन्हें शायद इस बात का एहसास ही नहीं है कि फोटो खींची जा रही है। स्वेंके के पोस्ट का कैप्शन है, लक्ष्य सिंह की बदौलत नए भारत में आपका स्वागत है। जो समझौता न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच हुए फ्री ट्रेड डील और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का संदर्भ है। स्वैंके ने इस महीने की शुरुआत में एक अन्य पोस्ट में बताया कि पुलिस ने उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन बुलाया, जहां एक वरिष्ठ सर्जन ने उनके शब्दों में कहा कि उनका पोस्ट भारतीय समुदाय के लिए अपमानजनक था। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए लिखा था कि जब आप नाराज लोगों के नरम अत्याचार के अधीन रहते हैं तो क्या होता है। बंगाल में जारी चुनावी हिंसा के बीच में बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीआई चंद्रनाथ दत्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हमले में उनके पीएस बुद्धदेव भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना मध्यग्राम में हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने चंद्रनाथ को करीब से गोली मारी, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब 4 मई को नतीजे आने के बाद से ही बंगाल में जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी के पीआई की मौत के बाद में हालात और बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। चंद्रनाथ रथ को जब गोली मारी गई तब वो अपनी कार से जा रहे थे। उनकी कार एक दुकान पर रुकी और तभी पीछे से आ रहे हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। घटना के वक्त शुभेंदु अधिकारी मौके पर नहीं थे।
5: स्पोर्ट्स न्यूज।
6: क्रुसेडर्स रग्बी टीम के पूर्व खिलाड़ी और न्यूजीलैंड रग्बी के इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद पिछले 6 महीनों से संभालने वाले स्टीव लैंकेस्टर को प्रमुख रूप से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। लैंकेस्टर साल 2020 से न्यूजीलैंड रग्बी एग्जीक्यूटिव टीम में है तथा पिछले 6 महीनों से वे इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भूमिका निभा रहे थे। न्यूजीलैंड रग्बी के चेयरपर्सन डेविड खेक ने पुष्टि की है कि स्टीव लैंकेस्टर को न्यूजीलैंड रग्बी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। वे पिछले 20 सालों से स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड रग्बी सहित क्रुसेडर्स रग्बी कनाडा और नेटबॉल न्यूजीलैंड के साथ में भी काम किया है। चैंपियंस लीग के डिफेंडिंग चैंपियंस पेरिस सेंट जर्मेन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख के होम ग्राउंड में उसके साथ में मैच 1-1 गोल से बराबर खेलने और 6-5 एग्रीगेट के साथ में पेरिस सेंट जर्मेन ने चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली है। फाइनल में उसका सामना आर्सेनल से होगा। पेरिस सेंट जर्मेन की ओर से बिलिंडुआ विनर और सुमाने डेम्बेले ने 3rd मिनट में ही गोल स्कोर कर दिया था, जबकि बायर्न म्यूनिख की ओर से इंजरी टाइम में हैरी केन ने गोल बनाया था, जो कि टीम को चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। वरिष्ठ खिलाड़ी लूट मैटकाफ ने टीम में अपने भविष्य को लेकर सवाल किया है। 27 वर्षीय खिलाड़ी मैटकाफ ने क्लब के साथ में अपने कॉन्ट्रैक्ट को साल 2028 तक के लिए बढ़ा लिया है। पिछले साल जून में घुटने में लगी चोट के बाद में अब उनकी वापसी इस सीजन में हुई है। उन्हें एनआरएल के राउंड 4 में वेस्ट टाइगर्स के खिलाफ मैच के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद में वे 3 मैच नहीं खेल पाए हैं। उनकी जगह टाना बोयर और चैनल हैरिस तावेटा ने अच्छा खेल दिखाया है, जिसके बाद में मैटकाफ को पिछले हफ्ते वाले मैच के लिए बेंच पर रखा गया था। वे जानना चाहते हैं कि क्लब के साथ में उनका क्या भविष्य है।
4: अभी और भी सूचनाओं से पहले आइए देख लेते हैं कि कल वेदर कैसा रहेगा। ऑकलैंड में आई थिंक आज जैसा वेदर था कल वैसा ही वेदर आपको मिलेगा। कल 14-21 degrees, क्लाउडी पीरियड्स, आइसोलेटेड शावर्स कुछ कुछ जगहों पर। इवनिंग में बारिश हो सकती है, कल हैवी बारिश हो सकती है। ओके, आज नहीं, कल डिफरेंट वेदर रहेगा। झोंके के साथ नॉर्थ की दिशा से हवाएं चलेंगी और इट विल बी विंडी अगेन टुमारो। तो 110 किलोमीटर पे आवर की रफ्तार से हवाएं बहेंगी कल ओकलैंड में। और हैमिल्टन में आज ओवरनाइट 12 है, कल दिन में मैक्सिमम 20 रहेगा। क्लाउडी पीरियड्स, एक दो शावर्स होंगे और शाम होते होते वहां पर भी बारिश होगी। और वेलिंगटन के लिए बताया गया है कि वहां पर आज ओवरनाइट 14, कल दिन में मैक्सिमम 18 बारिश होगी। गंभीर बारिश हो सकती है कल शाम के समय। नो गुड ब्रो, वीकेंड में लगता है वेदर भीगा भीगा सा रहेगा। डू टेक केयर, वीकेंड में मदर्स डे भी है। Spend time with your mama.
9: Loss of a loved one is an unfilled vacuum. Demise news.
4: और अब लीजिए सुनिए कुछ शोक सूचनाएं। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि एलन रुतावा फिजी के स्वर्गीय मुनसामी के बेटे, ऑकलैंड के शारदा मणि के पति, ऑकलैंड के रोनिल कृष्णा पुजारी और मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता, ऑकलैंड के सुब्रमणि और गोविंदा के भाई रॉबर्ट स्केलेटन रोड मनुरेवा की श्री कृष्णा हैरी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार के दिन में 1 बजे न्यूजीलैंड इंडियन फ्यूनरल सर्विसेज द्वारा मैनिकाऊ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-0292-65-78 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि एलांड्रोथा बफेजी के स्वर्गीय मुनसामी के बेटे ऑकलैंड के शारदा मणि के पति, ऑकलैंड के रोनिल कृष्णा पुजारी, मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता, ऑकलैंड के सुब्रमणि और गोविंदा के भाई रॉबर्ट स्केलेटन रोड मनुरेवा के श्री कृष्णा उर्फ हेरी की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार के दिन में 1 बजे न्यूजीलैंड इंडियन फ्यूनरल सर्विसेज द्वारा मैनिकाऊ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-0292-65-78 पर कॉल करें। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि रावी रावी मबा फिजी के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय गोपाल की पत्नी ऑकलैंड के मास्टर अशोक, विनेश कुमार, सलेशनी देवी, एंजिला देवी तथा ब्रिस्बेन की विजयंती देवी की मां ग्लेंडिन ऑकलैंड के गंगा माता की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार रविवार के दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-179-5459 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि रावी रावी मबा फिजी के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय गोपाल की पत्नी ऑकलैंड के मास्टर अशोक, विनेश कुमार, सलेशनी देवी, एंजिला देवी तथा ब्रिस्बेन की विजयंती देवी की मां ग्लेंडिन ऑकलैंड की गंगा माता की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार रविवार के दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 46A हामेल रोड ग्लेंडिन जाएं या 021-179-5459 पर कॉल करें। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि सनी वेल की स्नेह लता सुमेश्वर तथा स्वर्गीय डॉक्टर नीरज सुमेश्वर के बेटे ऋषि सुमेश्वर यादव की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शनिवार के दिन में 11 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-0817-1497 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि सनी वेल की स्नेह लता सुमेश्वर तथा स्वर्गीय डॉक्टर नीरज सुमेश्वर के बेटे ऋषि सुमेश्वर यादव की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शनिवार के दिन में 11 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-0817-1497 पर कॉल करें।
10: शोक सूचनाएं ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम की तरफ से।
11: बॉलीवुड ट्रिब्यूट नाइट का आयोजन किया गया है। ये एक चैरिटी शो है, शनिवार 23 मई को शाम को 7 बजे से वैदिक सेंटर पर होने जा रहा है। इससे जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो बुधवार देवू नांदी के एक परिवार के लिए इकट्ठा किया जा रहा है जिनका घर नष्ट हो गया है, और साथ में एक फंडरेजर इवेंट रहेगा। 147 गिरमिट रिमेम्बरेंस डे का आयोजन किया गया है शनिवार 16 मई को मलायला कम्युनिटी सेंटर 16 वाकोरी प्लेस मांगरे में शाम को 6:30 से लेकर के 8:30 बजे तक टी और स्नैक्स का आयोजन रहेगा। 3 दिनों के लिए देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया है 733 ग्रेट साउथ रोड पैपेटोएटोए में महिंद्रा बिल्डिंग A1 इवेंट सेंटर के बाजू में 17 से लेकर के 19 मई तक शाम को 7:15 से लेकर के 9 बजे तक कथा होगी। सभी दिन भोजन का प्रबंध रहेगा। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवास्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
12: वतन से दूर आपको वतन की याद दिलाता है, आपको खुश करता है, आपका ख्याल रखता है, आपका फेवरेट, आपका साथी रेडियो तराना।

गुरु अनाथ का ये प्रोग्राम लेकर मैं हेमंत आपके साथ हो गया हूँ। छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को नमस्कार। 7th of May है आज, 127th day तक हम पहुंच गए हैं। साल के अंत तक 238 डेज ही बाकी है। वीकेंड की तैयारी में आप भी जुटे हुए हैं और वीकेंड वेदर, वीकेंड के इवेंट्स के बारे में कुछ बातें करेंगे। आपके लिए ये वीक कैसा रहा और कुछ नई ताज़ी कुछ और खबरें मिलती रहती हैं, कुछ नए नए गीत आते हैं, जानकारी होती है, उनको भी आपके लिए शेयर करते हैं। 3031386 स्टूडियो का नंबर, SMS कर सकते हैं आप 8812 पर। रात 10 बजे तक साथ निभाने के लिए तैयार हो जाइए। मैं हेमंत आपके साथ हूँ, आपके पसंद गाने, आपके पसंद के गाने पेश करने के लिए और आपको मनोरंजन देने के लिए। सो वेलकम टू द शो।

0: चंचल बातें लाजवाब गाने विद हेमंत।
1: जिंदगी बहुत कीमती है तो फ्यूनरल भी अलग ही होना चाहिए, ठीक वैसे जैसे जिंदगी उन्होंने जी थी। ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम ने पिछले कई सालों से हमारी कम्युनिटी को बेस्ट फ्यूनरल सर्विस दी है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी किसी भी रिलीजन की जरूरत को समझकर बिल्कुल सही तैयारी की जाती है। यहाँ इजी पे फ्यूनरल प्लान भी अवेलेबल है। इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स पर एडवांस पेमेंट के बारे में पता करने के लिए कॉल करें 2788600।
2: सुनते हो, घर बनाना स्टार्ट करना है पर मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है बजट और डिलेज की।
3: हाँ, इसीलिए सही बिल्डर चूज करना बहुत जरूरी है।
2: पर कौन? सब लोग तो अलग अलग बताते हैं।
3: मैंने KMB कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत सुना है, वो घर बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर कंप्लीट कर देते हैं।
2: सच?
3: हाँ, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ओकलैंड में और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। चलो भूपेंद्र कुमार को कॉल कर लेते हैं 021-874-871 पर, kmbconstruction.co.nz पर देख भी लेते हैं।
4: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथटेकिंग फोटोग्राफ्स। दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K वीडियो शूटिंग फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर और मैसिव वेडिंग। कॉन्टैक्ट मल्टी डीजे
5: विद ऑल लेटेस्ट इक्विपमेंट। दे also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021-058-4711.
6: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर।
7: रेडियो तराना के गुरुवार रात के इस प्रोग्राम में आपके लिए अच्छे चिकित्सा तो संगीत और तो जानकारी अभी पेश करते हुए डिजिसल का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो खास मदर्स डे के लिए कुछ ला रहे हैं। सेलिब्रेट मम दिस मदर्स डे विद डिजिसल, सेंड $20 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू माय कैश वॉलेट इन पैसिफिक एंड यू कुड विन वन ऑफ 15 500 कैश प्राइजेस। डिजिसल, मेकिंग इट ईजी टू शेयर लव, टीज एंड सीज अप्लाई। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं, मदर्स डे के भी गीत पेश करते रहेंगे आपके मनोरंजन के लिए इस वीकेंड के प्रोग्राम में भी। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये गाना भी आपको जरूर पसंद

आएगा, मैंने किसी को दिल दिया, पूछो पूछो कौन है वो, कौन है वो, कौन सी फिल्म का गाना है पता है आपको, याद है? फिल्म का नाम है आई मिलन की बिला। मुझे भी अच्छा लगता है गाना, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। शायद इन पुरानी फिल्मों के नाम हमारे माइंड में रजिस्टर हो गए, आई मिलन की बिला नहीं, आई मिलन की रात है। चलो ये गाना भी आपको जरूर पसंद आएगा आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ।

0: listening to your favourite RJ Hemant Puri.
1: Make your budget stretch further with Mitre 10. Freshen up the walls with Accent Interior Paint 10 litre, now $119. Plus get 20% off assorted Nuvo tapware. T's and C's apply. Grab these great deals and more in store or online at Mitre 10.
2: There are days when you nail parenting, but this isn't one of them. There's not even a single cherry tomato for their lunchbox. And is that a tumbleweed? Luckily, a DoorDash hero emerges. That's me.
3: Dash! Savior of the lunchbox!
2: Now the kids have a tasty lunch that you can totally share on the gram. With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
3: Dash!
4: Hey Hamiltonians, guess what? Ab aapke yahan Hamilton mein aa gaya hai Global Finance. For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing ya refinancing ke liye, contact kare Global Finance ko, jo mortgage ke saath saath insurance mein bhi specialize karte hain. Life, trauma, health insurance, har cheez ke liye Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577-0888. Global Finance, now in Hamilton.
5: From the age of 10, I knew you would come. I didn't know when, but you arrived. Almost identical twins. Not quite. One just slightly bigger than the other. But you are the bravest part of me. The older I get, you're not always first into the room, but sometimes, if I give you the support you need, you'll be first into the room. You're close to my heart, and I love you. My name is Ursula Carlson, and this is a love letter to my breast.
1: Get to know yours, visit breastcancerfoundation.org.nz.
6: गुरु रात का ये प्रोग्राम और भी म्यूजिकल बनाते हैं. म्यूजिकल हमारे लाइफ में जो बदलाव लाता है, एक कहते हैं ना कि मूवमेंट इज मेडिटेशन. अगर आप मूवमेंट करते हैं तो दवाई लेने की जरूरत नहीं है, तो दवा की तरह आपको बदलाव दे देती है, दवा से ज्यादा बेहतर बदलाव देती है. म्यूजिक भी मेडिटेशन है, म्यूजिक भी मेडिकेशन है. आप म्यूजिक में ट्रांस में चले जा सकते हैं, कुछ शांत म्यूजिक सुनकर आप ध्यान में चले जा सकते हैं. कुछ ऐसा संगीत है जिनके शब्द संगीत उस दौर की कुछ यादें लाकर हमारे मन को प्रफुल्लित कर सकते हैं. तो ऐसे ही कुछ गाने एक के बाद एक पेश करते हैं. तो ये गाना, फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा, गाना लाजवाब है. हीरोइन भी लाजवाब थी, संगीत भी लाजवाब था, इसकी कंपोजिशन भी लाजवाब थी. कई दिनों बाद ये गाना सुनने जा रहे हैं आप कहेंगे कि वाह क्या ये गीत, क्या इतना अच्छा गीत है, कहां था ये गीत, क्यों इतने दिनों से हमने नहीं सुना. सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे, गाना ही इतना प्यारा है. सुनिए ये गाना.

0: Join the Great Big Balance Check at New World. Whether it's treating yourself to a chocky bar or treating the whole fam to dinner, you could have New World dollars waiting to spend. Check your balance in the New World app or ask at checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
1: न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनकाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505 और सुनिए ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505
2: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
3: व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस रन ऑन बिजनेस फाइबर? Cloud thriving businesses, CGI building businesses, even big file sharing, video calling, meme sharing businesses. For uncompromising bandwidth and reliability, get your business running on Business Fiber. Good.

0: Weekdays from 9 a.m. to midday. Rana suno, dil ko jodo,
1: hemant ke sang masti mein jhoomo. Gurwar raat ki is program mein aam pe ke liye geet aur sangeet aur jankari to pesh karte hi hain. In dinon WhatsApp par ek scam chal raha hai ki koi aapko aapke dost ki photo laga kar kuch aisa message kare ki aapko paise ki unko paise chahiye ya koi code bheje, to log code bhej ke अपना फोन का पूरा कंट्रोल उनको दे देते हैं और फिर उनका फोन हैक हो जाता है, फोन को रीसेट करना पड़ता है, अपने दोस्तों को भी वो मुसीबत में डालते हैं। तो कभी भी कोई ऐसा मैसेज आए सोच समझ के आगे बढ़िएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि हम मुश्किल में पड़ सकते हैं और यहां पर औरों को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। बेवजह कोई आपके पैसे उठा ले और आपको मुश्किल में डाले, ऐसा नहीं करना चाहिए। मोहब्बत की कई परिभाषाएं होती हैं, मोहब्बत को शब्दों में कहना मुश्किल होता है क्योंकि कहीं आप आई लव यू बोले, आमी तुम्हें के बारो आशी बोले, हूँ तने प्रेम करूँ छूँ, ये सब शब्द हम बोल सकते हैं लेकिन अपना वास्तविक अनुभव जब होता है प्रेम का, उनकी उपस्थिति में उनके प्रेजेंस से जो प्रेम होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो चलो ऐसा ही कुछ गाना एंजॉय करते हैं हमारे साथ जिसमें शब्द शब्दावली

0: Join the Great Big Balance Check at New World. Whether it's treating yourself to a chocky bar or treating the whole fam to dinner, you could have New World dollars waiting to spend. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
1: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं. तो याद रखें, प्लास्टिक 1, 2 और 5 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें. सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है. सर्च करें Auckland Council Recyclable Items. Tamaki, Turuki, all together. Auckland.
3: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
4: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
5: Brought to you by Indelible Homes and Chasers. Tarana.
6: रेडियो तराना का ये मनोरंजन भरा प्रसारण आप सुन रहे हैं मेरे हेमंत के साथ. यहाँ पर अच्छे अच्छे गीत और संगीत के साथ मदर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं सभी माताओं को और सभी बच्चों को जो माता पिता के साथ रहते हैं. या माताओं का आशीर्वाद अभी भी है, चाहे माँ न हो तो मौसी या फिर आंटी या आपकी फुआ या जो कोई भी आपके रिश्तेदार या पहचान वाले हैं जो माँ का दर्जा हासिल करते हैं, माँ की ममता की तरह ही आपको प्रेम करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं. आप लिसनर्स में से भी कई सारे हमारे लिसनर्स हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं, तो आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं. आप सब स्वस्थ रहें. मुलाकात तो होती रहती है, बट जब भी मिलते हैं जम के मिलें और यूं ही रेडियो तराना सुनते रहें. तो आइए मदर्स डे के उपलक्ष्य में ये गाना भी शामिल करते चलें.

0: चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, हमारी उम्मीद का पुल कभी जोड़ना नहीं भूलते। जैसे माँ प्यार करती है ना, वैसा कोई नहीं कर सकता। वरना फूंक मारने से भला कौन सा जख्म भरता है। इनकी बाहों में जन्नत और बातों में खुदा होता है, क्योंकि माँ को सब पता होता है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: रेडियो तराना, टाइम चेक।
3: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
4: कशिश फूड की ओर से टाइम चेक कह रहा है कि स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बज रहे हैं।

गुरुवार रात का ये संगीतमय प्रोग्राम टेरिफिक चुंज विद हेमंत आप मजा ले रहे हैं शुक्रवार की तैयारी में। होपफुली शुक्रवार को बारिश की चपेट में ज्यादा शहर ना आ जाए, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमारे ऑकलैंडर्स के लिए फोरकास्ट था। ओवरनाइट कल भी थोड़ी बारिश रही, 4 बजे से कल सुबह से थोड़ी बारिश होगी, एंड देन माइट नॉट बी सम रेन टिल द इवनिंग। नाउ कल शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक बारिश के चांसेस है ऑकलैंडर्स के लिए, ना हो कुछ कुछ इलाकों में हो सकते हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छे अच्छे गीत और संगीत सुनने के लिए तैयार रहेगा, आपकी पसंद के और भी अच्छे अच्छे गीत पेश करेंगे। फिल्म कृष्णावतारम इसी वीकेंड में शुरू हो रही है, एक ऐसी फिल्म जिसमें कृष्ण लीला और यू नो मैग्नम ओपस, मतलब कि इतने बड़े पैमाने पर इस फिल्म की पिक्चराइजेशन और इतनी लाजवाब दृश्य देखने को मिलेंगे। गाने भी लाजवाब है, जावेद अली, श्रेया घोषाल, सुनील जी चौहान सब ने गाने गाए हैं, तो इन गानों का मजा लेने के लिए तैयार रहिएगा हमारे साथ इस प्रोग्राम में। तो पेश करते चलें श्रेया घोषाल और जावेद अली की आवाज में ये गाना प्रेम की लीला।

0: झुमका
1: म्यूजिकली मेलोडियस प्रोग्राम बनाने की पूरी कोशिश में मैं हेमंत रहता हूं आपके साथ. आपका साथ भी प्यारा है. थैंक यू सो मच नेशनल इंटरनेशनल लिसनर्स. आप के लिए ये प्रोग्राम पेश करने का मजा ही कुछ और होता है. तो लीजिए यहां पर पेश करते चले जावेद अली का ये बहुत ही प्यारा गाना एक दिन तेरी राहों में. आप भी साथ निभा रहे हैं. आपके फीडबैक के लिए आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.

0: फ्यूल का दाम रोज बढ़ रहा है और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है इफिशियंट ड्राइविंग का और वेस्ट सिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, इफिशियंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो एमिशन, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट westcityautogroup.nz और सर्च ऑन सोशल्स फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप।
1: Bunnings Trade is here to help you get set for winter with 134 Trade. For quick quotes and pricing, stock queries, order and delivery updates and general inquiries, contact the 134 Trade team today on 0800 134 872. Bunnings Trade, helping business is our trade.
2: अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
3: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
2: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
3: प्यारा मंडप तो है पर खर्चा बड़ा क्या होगा भाभी जी?
2: नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एनजेड मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
4: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एनजेड मंडप फेसबुक पेज।
5: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्किस पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
6: अजीम के साथ मंगल की रात 7 से।
7: हमारे अलग अलग साथियों का प्रोग्राम भी लाजवाब होता है, इनका भी साथ निभाते रहते हैं आप, अच्छा लगते हैं। आपका फीडबैक, आपके मैसेजेस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश में रहते हैं जब भी प्रोग्राम में आते हैं आपके लिए कुछ अच्छा पेश करें, आपको मनोरंजन दें और इसके साथ साथ औरों को भी मनोरंजन मिलता है। अच्छी बात यह है कि म्यूजिक सुनने से ही आपके मन में कुछ परिवर्तन होता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है और आप कुछ अपने गम को भूल जाते हैं, थकान दूर हो जाती है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये संगीत में सफर आप सुन रहे हैं। मेरे सोशल मीडिया से डायरेक्ट आप मैसेज करके मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम और जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा रेडियो तराना। आगे बढ़ते हैं फिल्म कृष के इस गीत के साथ।

हमारे जीवन में हम इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि वाकई जीवन जीना भूल जाते हैं। हमको पता भी नहीं होता कि हम सांस ले रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा होता है। अगर आप देखिए कि कुछ लोग मोबाइल में ऐसे जुड़े होते हैं, जैसे आई वेंट थ्रू अ पेट्रोल स्टेशन, मैं बाहर निकल रहा था, एक व्यक्ति अपने फोन में ऐसे ही मिला हुआ था, गुलाम मिला हुआ था कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, वो नहीं देख रहे हैं। तो मतलब कि हम इतने बिजी हो जाते हैं, लाइफ जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन जीने में, जीने के साथ साथ हंसना भी चाहिए, एक्सरसाइज है, पॉजिटिविटी है, कुछ अच्छा देखना सुनना होता है। लेकिन हंसना कितना अच्छा होता है, आप सोचिए, आप हंसेंगे तो औरों को भी हंसाएंगे, आपकी चेहरे के जो मसल्स है वो लूज होके स्ट्रेस फ्री होगा,

आपका शरीर, आपके मन को परिवर्तन करने में हंसना कितना जरूरी है। तो चलो हंसने वाले कुछ गीत हैं, हंसने शब्द पर, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, और जीना है तो ऐसे जो जीवन में एक पल भी रोना ना। तो ऐसे अच्छे अच्छे गीत भी आपको सुनकर अच्छा लगेगा। हमारा फर्ज बनता है आपको मस्त रखें, मुस्कुराते रखें।

0: मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार।
1: देखिए एक कहानी प्रेम की, एक कहानी कर्तव्य की, कृष्ण अवतारम।
2: अच्छा कान्हा, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा। माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं।
1: कृष्ण अवतारम पार्ट वन हृदयम इन सिनेमास फ्रॉम 7th May, प्राउडली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फोरम फिल्म्स।
3: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
4: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे।
5: iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाए। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
6: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर।
7: रेडियो तराना की रात के इस प्रसारण का मजा ले रहे हैं, टॉरिफिक चुनरित हेमंत आप सुन रहे हैं। ह्यूमिडिटी ऑकलैंड में 67% की रहेगी, 16 डिग्रीज का ओवरनाइट टेम्परेचर रहेगा। होपफुली शुक्रवार को बारिश थोड़ी हो, रविवार को हवाएं चलेगी तो वीकेंड में मौसम अच्छा रहेगा। यहां पर आपके लिए अच्छे अच्छे गीत और संगीत का मजा दे रहे हैं टॉरिफिक चुनरित हेमंत। रात 10 बजे तक मैं आपका साथ निभाऊंगा। अगले घंटे का प्रोग्राम भी लाजवाब है, तो इसको भी जरूर सुनिएगा और मजा लीजिएगा। आप इंजॉय करें, मैं खिलाड़ी कुमारी का

0: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
1: जिंदगी से जब कोई अपना चला जाता है तब सिर्फ सहारे की ही नहीं सहायता की भी जरूरत पड़ती है। सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी ले लेती है। एम्बामिंग, सर्टिफिकेट्स, लाइव स्ट्रीमिंग, पंडित, मंडली, ओवरसीज रिपेट्रिएशन, विंस और सबसे अलग बात अस्थि विसर्जन के लिए इनके पास अपनी बोट भी है। सब कुछ प्रोफेशनली अरेंज किया जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली $4,299 आज ही कॉल करें 09263-0101 पर।
2: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथ टेकिंग फोटोग्राफ्स। दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K वीडियो शूटिंग फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर और मैसिव वेडिंग। कॉन्टैक्ट मल्टी डीजे।
3: विद ऑल लेटेस्ट इक्विपमेंट दे ऑल्सो ऑफर इजी पेमेंट ऑप्शन। कॉन्टैक्ट डीजे दिनेश फोन नंबर 0210584711।
4: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
5: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
6: Brought to you by Indelible Homes and Chasers. Tarana.
7: गुरु आदात के इस प्रोग्राम में अगले घंटे में बहुत ही लाजवाब पॉपुलर कैटेगरी के गाने आपको सुनने का मौका मिलेगा मेरे हेमंत के साथ। तो यहाँ पर आप लिसनर्स के साथ अच्छा लगता है ये संगीत में सफर तय करना। आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ। मैया यशोदा हम साथ साथ है कई गीत मदर्स डे के उपलक्ष्य में, और फिर फिल्म मदर का एक टाइटल सॉन्ग है अनुराधा पौडवाल की आवाज में, मदर मदर डियर मदर। सभी मदर्स को डेडिकेट करते हैं ये गाना, और भी अच्छे अच्छे गाने सुनते सुनाते रहेंगे रेडियो तराना के सफर में।

0: The Runner. Dime check.
1: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
2: गुड इवनिंग, रेडियो तराना आप सुन रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात के 9 बज रहे हैं।

रेडियो तरन आप सुन रहे मेरे हेमंत के साथ गुरुवार रात के इस प्रोग्राम में एक घंटे के लिए कुछ पॉपुलर गाने पेश करेंगे। पॉपुलर इसलिए क्योंकि इसको पॉप कैटेगरी कहा गया। अपने जमाने के कुछ मशहूर गाने हैं जो उछल कूद वाले हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं, कुछ ऐसे गायकों के हो सकते हैं जो बाद में प्रचलित हुए या कुछ वहाँ तक ही लिमिट में ही रहे, पॉप कैटेगरी में ही आए और गए पता भी नहीं चला, लेकिन गाने जो गा गए वही लाजवाब है। आज वही आपके लिए पेश करना हमारा फर्ज बनता है। तो सबसे पहले सोनू निगम का नया ही अंदाज आया, लेकिन पुराना बिजुरिया वाला बहुत ही मशहूर था। इसके बाद अलीशा चुनाई का मेड इन इंडिया भी पेश करेंगे इस एक घंटे में।

0: right now at Guthrie Vowron. Enjoy free curtain making on thousands of quality fabrics. Take 15% off selected blinds, shutters and motorisation. Plus receive a free in-home measuring quote. Cozy up your home in time for the cooler months. Guthrie Vowron. Inspiration starts here.
1: New Zealand के कई बड़े-बड़े events में होने वाले जो बड़े-बड़े Maki आप देखते हैं ना, अरे मनगाओ दिवाली सिक गेम्स में ये Maki events Auckland Maki and Party Hire के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके Maki बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर Maki लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505 और सुनिए ये पोर्टल लो भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505
2: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर मंडप और Maki's पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
3: आशिक होम्स लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम रेंट टू बाय फैंटास्टिक opportunity to own a brand new home. If you have KiwiSaver and some debt, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue. Finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz.
4: Radio Tarana है ये प्लान बिजनेस को बनाए सुपरमैन
5: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन रेडियो तराना।

0: Call Ajeshni today on 02196-1386 for sales on Tarana. So yaad rakhna, number ghumana, 02196-1386 for advertising on Radio Tarana.
1: Tarana suno, dil ko chodo, himmat ke sang, masti mein jhoomo.
2: इन दिनों जो गाने आते हैं शायद पॉप कैटेगरी में इतने ज़्यादा हम इनकी पहचान नहीं करते हैं जितना पुराने गानों की करते थे, स्पेशली ये जो 90s के गाने हैं, चाहे वो सोनू निगम हो, अलीशा चिनॉय हो, दिलेर मेहंदी हो या फाल्गुनी पाठक हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चलो तो आगे बढ़ते हैं, दिलेर मेहंदी का एक चंचल अंदाज पेश करते चले, बोलो तारा, ये भी पॉपुलर कैटेगरी में बहुत ही पॉपुलर हुआ था और मशहूर है रहेगा ये गाना.

0: मॉर्निंग बज़ विद जिलेश।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो तराना।
2: यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट आरजे हेमंत परी।
3: पॉपुलर कैटेगरी के लाजवाब गाने हैं यहाँ पर, नदीम श्रवण जोड़ी के नदीम सैफी और अलका याग्निक का साइश एल्बम काफ़ी मशहूर हुआ था, कैलाश खेर का अल्लाह के बंदे भी पॉपुलर कैटेगरी में मशहूर हुआ। तो ऐसे ही कुछ और गाने हैं जो आज रात को आपको मनोरंजन दे रहे हैं हमारे साथ इस एक घंटे के सफर में। और भी पॉपुलर गाने हैं, 10 बजे से पहले सुनते रहिएगा ओनली ऑन तराना।

पॉपुलर कैटेगरी के गानों का मजा आप ले रहे मेरे हेमंत के साथ। यहाँ पर जुनून बैंड का सयोनी, ये भी काफी मशहूर हुआ था, और हाल ही में कैलाश खेर का जो ये गाना आपने सुना अल्लाह के बंदे, ये ऑटो लिविंग आश्रम बैंगलोर में गए थे, वहां पर शिष्य रविशंकर जी के साथ इन्होंने कई सारे अपने गाने गाए, वो बाहुबली के गाने गाए, बबम बम गाया। तो मतलब कि कैलाश खेर इतने प्रभावित हो गए और इतनी अच्छी पहचान मिली, और अब वहां पर कॉन्सर्ट भी करने वाले हैं नवंबर में अपना कैलाश का। तो कैलाश खेर भी एक अच्छे कलाकार रहे हैं और इनके भी अच्छे अच्छे गाने पेश करते रहेंगे। यहां पर सयोनी का गीत, सयोनी गीत का मजा लीजिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में।

0: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे।
1: iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
2: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
3: Kick off the winter season with these winning deals from Rebel. Like 20% off all women's Puma, New Balance and Under Armour clothing and running shoes. And 20% off football, rugby and netball equipment. These deals and so much more are now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: Get into Bunnings today and get cooking, because you can pick up a Mistral 6.5 litre digital air fryer for just $69. But hurry, only while stocks last. Shop online or in-store at
5: Bunnings Warehouse. Love yours in the game.
6: Your weekly dose of love and great conversations with your very own Sapna.
7: Sapna Sunday ko 2 PM se aapke saath.
8: Ye to sangeet ka maza aap le rahe hain. Yahan par hopefully आने वाले दिनों में मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं आए। ये जो ऑटम का लास्ट महीना है ये भी थोड़ा अजीब सा है, थोड़ी गर्माहट होगी, ठंड थी, बारिश तो हो सकती है गंभीर, लेकिन ओपनिंग के वीकेंड में ज्यादा ना हो ताकि हमारा वीकेंड अच्छा रहे। पॉपुलर कैटेगरी के गाने आप सुन रहे हैं मेरे हेमंत के साथ, उस्ताद सुल्तान खान और के एस चित्रा की आवाज में गाना पेश करेंगे पिया बसंती। उससे पहले आर्यन का ये गाना काफी मशहूर हुआ था 90s में, इसका भी मजा लेते चले।

0: Gift instant joy this Mother's Day with Instant Kiwi. Whether you've got flowers, chocolates, or a good book, Instant Kiwi is the perfect something extra to spoil her with. Get a $10 gift pack from your local Lotto NZ store. R18.
1: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
2: जिंदगी से जब कोई अपना चला जाता है, तब सिर्फ सहारे की ही नहीं, सहायता की भी जरूरत पड़ती है। सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी ले लेती है। एम्बामिंग, सर्टिफिकेट्स, लाइव स्ट्रीमिंग, पंडित, मंडली, ओवरसीज रिपेट्रिएशन, विंस और सबसे अलग बात, अस्थि विसर्जन के लिए इनके पास अपनी बोट भी है। सब कुछ प्रोफेशनली अरेंज किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली $4,299। आज ही कॉल करें 09263-0101 पर।
3: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
4: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
5: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
6: रेडियो तरंग का ये प्रसारण सुनते सुनते या सुनाते सुनाते 10 बज गए हैं रात के। अब मेरा जाने का वक्त हो रहा है। यहाँ पर मदर्स डे के लिए कैलाश खेर का एक मम्मा वाला गीत पेश करना चाहता हूँ, जो भी पॉपुलर कैटेगरी में मशहूर हुआ। और यहाँ पर गोरी तेरी आंखें, लकी अली और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में ये गीत आपके लिए पेश करते जा रहा हूँ। वीकेंड जम के मनाएगा। अगली मुलाकात सोमवार को होगी और नेक्स्ट वीक से हमारे प्रसारण में अगर रद्द बदल हो गए, सब ठीक ठाक हो गया, तो और भी मजा मिलेगा। तो मिलते हैं मंडे को मेरी पसंद में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। ये पॉपुलर कैटेगरी के गाने आपने इंजॉय किए हैं, आप और भी फीडबैक देते रहेगा, SMS करते रहेगा मुझे 8812 पर। ईमेल info@tarana.co.in स्टूडियो में आता है, या मेरे स्टूडियो नंबर पर 8812 पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे मोबाइल या सोशल मीडिया से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुद का ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मेरी ओर से टाटा बाय बाय।

0: Tarana. Dine check.
1: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
2: तराना स्टूडियो में रात के 10 बज चुके हैं

देख लीजिए, रूप आपके सामने आ जाती है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, रास्ता साफ हो ना हो, लेकिन हम क्या करें, हमें आपसे बेपनाह मोहब्बत है, इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं लेकर तराना के रंग रूपा के संग।

0: कभी
1: शामल सावरे मैं परूं पावरे,
2: चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार।
3: देखिए एक कहानी प्रेम की, एक कहानी कर्तव्य की, कृष्ण अवतारम।
4: अच्छा हो काना, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा। माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं।
3: कृष्ण अवतारम पार्ट वन हृदयम इन सिनेमास फ्रॉम 7 मई, प्राउडली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फोरम फिल्म्स।
5: A good lawyer is recognized for their experience, trustworthiness, and understanding of their client's legal needs. Over the past 30 years, Schaubner is chosen by many, consultant with Sutcliffe Matson Law, now based in new premises at Botany Junction, for property, business, subdivisions, leasing, relationship property, wills, trusts, powers of attorney, and other legal matters. Call Schaubner on 021-625-708 or email schaubner@smlaw.net.nz.
6: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ऑल टुगेदर ओकलैंड।
7: रेडियो तराना का है ये प्लान, बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
8: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन रेडियो तराना।

0: Call Ajeshni today on 02196-1386 for sales on Tarana. So yaad rakhna, number ghumana, 02196-1386 for advertising on Radio Tarana.
1: Ye hai New Zealand ka number one Hindi radio station, Radio Tarana.
2: अभी आपने आंखें फिल्म के गाने सुने होंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से गाने थे. मुझे तो माला सिन्हा जी बहुत अच्छी लगती, मुझे वैसे सारी हीरोइनें ही अच्छी लगती थी. ऐसा लगता था कि शायद वो हीरोइनें नहीं है, मैं खुद वहाँ पर एक्ट कर रही हूँ. क्या करें, ऐसा होता है होता है. जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते. अभी बताइए ना, मैं आती हूँ आपके सामने, इसलिए आती हूँ क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी करती हूँ. जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, खत किसके लिए रखे हैं, जला क्यों नहीं देते. और जलाइएगा मत, मैं टेक्स्ट करते ही रहूँगी क्योंकि आजकल खतों का ज़माना नहीं रहा.

0: जब जब किसी से किसी को मोहब्बत होती है ना, तो उसकी तस्वीर दिल दिमाग आंखों में बसी रहती है। हम भी आपको एक बात बताएं, पता मुझे किसी ने कहा कि मैं खाना खाता हूँ तो थाली में तुम्हारी शक्ल दिखाई देती है, मैं बाहर जाता हूँ तो दरवाजे पे लगता है तुम्हारी शक्ल है। शायद आपको भी ऐसा इल्हाम कभी ना कभी हुआ होगा कि आपको कोई ना कोई ज़रूर ऐसा मिला होगा जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। कहते हैं आँखों को उठाएं तो मोहब्बत का गुमा होता है, आँखों को उठाएं तो मोहब्बत का गुमा होता है, नज़रों को झुकाएं तो शिकायत सी लगे है मुझको।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन

0: I get hurt, who's going to walk the dog? Who's going to take Gran to her appointment? Who's going to take the tamariki to karate training? Who's going to chat to auntie? Who's going to organise the potluck dinner at school? Who's going to give me a bath?
1: Have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
2: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शंस पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
3: चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार।
4: देखिए एक कहानी प्रेम की, एक कहानी कर्तव्य की, कृष्ण अवतारम।
5: अच्छा कान्हा, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा। माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं।
6: Krishna Avataram Part 1 Hridayam in cinemas from 7th May, proudly distributed by Forum Films.
7: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
8: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
9: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
10: You are tuned into Radio Tarana.
11: मुझे लगता है आप दिल दिमाग से मेरे गाने सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स सुन रहे हैं। मुझे ना पता है टेक्स्ट आते हैं। आप बोलेंगे टेक्स्ट कैसे आते हैं, क्योंकि मैं नंबर देती हूँ। मेरा नंबर है 02166560 9। वैसे आप हमारे 1386 पर भी ईमेल कर सकते हैं, उसमें नंबर डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे क्या क्या गाने आप लोगों के लिए लाने चाहिए। क्या करें, आपसे मोहब्बत होती ही इतनी जाती है। क्या कहते हैं ना, मोहब्बत का कोई एंड नहीं होता, दुश्मनी का एंड हो जाता है। कोई इंसान किसी को मार डालता है, लेकिन मोहब्बत पता नहीं जब शुरू होती है, होती नज़रों से है, लेकिन ना जाने कहाँ से कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। दिल दिमाग में ऐसे लगता है बस वो इंसान के पास जाएं, उससे बातें करें और बातें करते करते करते रहें। इसलिए बातें करते करते मैंने कहा बहुत बातें कर ली यार, अब मेरे गाने तो सुनो आप।

0: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations. Like Samoa from $305 one way. Tonga from $319. Tokyo from $635. Singapore from $699. And Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
1: Moa Point Wastewater Treatment Plant se untreated wastewater Cook Strait mein discharge ho raha hai aur Wellington South Coast tak ja sakta hai. Water quality jankariyon ke liye hamesha yaad karke LAWA website dekhe. Tairne jane se pehle lawa.org.nz dekh le. South Coast ke Tarakena Bay se dur rahe. Untreated wastewater tat ke kareeb discharge ho sakta hai short notice par aur bagair chetavani ke. Khaas taur par gambhir barish ke samay. Aur jankari ke liye wellingtonwater.co.nz dekhen.
2: Capture the impossible with Spark and the new Samsung Galaxy S26 series with huge deals on now. Heading to Spark Arena? Put the latest nightography to the test and capture the best details of the night. Then with Photo Assist, easily say goodbye to the dancing photo bombers in the back. Buy from Spark for huge deals on the Galaxy S26 series now. T's and C's apply. Delivery times may vary.
3: पसंद सोमवार रात 7 से हेमंत के साथ
4: आप सोच रहे होंगे मैंने कितने गाने सुनाते हैं कितनी बातें की हैं पता है आपसे मिलके क्या कैसा लगता है मुझे आज तो मिलके भी जैसे ना मिले हो तुमसे आज तो मिलके भी जैसे ना मिले हो तुमसे चौंक उठते थे कभी तुम्हारी पहली मुलाकात पर ऐसा भी लगता है मुझे कि आज पहली बार मैं रेडियो तराना पर आई हूँ अपना प्रोग्राम दे रही हूँ जैसे मैं एक आई थिंक 95-96 में आई थी तब मैंने प्रोग्राम किया था तो यूं ही लगता है यूं ही नयापन लगता है यूं ही आप लोग अच्छे लगते हो यूं ही आप लोग प्यारे लगते हो इसी तरह का प्यार एक्सचेंज करते रहिएगा अब रूपा को इजाज़त दीजिए

0: Hi, this is Imran Khan, only on Radio Tehrana.
1: चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार।
2: देखिए एक कहानी प्रेम की, एक कहानी कर्तव्य की, कृष्ण अवतारम।
3: अच्छा कान्हा, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा। माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं।
2: Krishna Avataram Part 1 Hridayam in cinemas from 7th May. Proudly distributed by Forum Films.
4: Elf Discount Furniture. Papa Toy mein chal raha hai amazing specials. From beds, dining suites and lounge suites. Khareedi a beautiful 7-piece dining suite ya quality corner lounge suite or luxurious green pillow top pocket spring mattress at reasonable price. Quality furniture low price mein. Elf Discount Furniture. Limited stock available. 355 Great South Road, Papa Toy.
5: Zindagi se jab koi apna chala jata hai, tab sirf sahare ki hi nahi, सहायता की भी जरूरत पड़ती है। सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी ले लेती है। एम्बामिंग, सर्टिफिकेट्स, लाइव स्ट्रीमिंग, पंडित मंडली, ओवरसीज रिपेट्रिएशन, विंस और सबसे अलग बात, अस्थि विसर्जन के लिए इनके पास अपनी बोट भी है। सब कुछ प्रोफेशनली अरेंज किया जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली $4,299। आज ही कॉल करें 09263-0101 पर।
6: सुनहरी यादें गोपाल के साथ रविवार को।
7: कभी कभी एक गाना ही काफी होता है किसी को फिर से महसूस करने के लिए। अजीब है ना, हर गाना कोई ना कोई याद जगा देता है।

0: नहीं साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: भाई साहब आइए, कैसे हैं?
1: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
0: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
1: प्यारा मंडप तो है, पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी जी।
0: नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एग्जैक्ट मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
2: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एग्जैक्ट मंडप फेसबुक पेज।
3: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्किस पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
4: कानून तोड़ दिया, अब तो तू बेटा क्रिमिनल हो गया।
5: तुम पे बहुत तरस आता है यार, पर पुलिस का मामला है तो।
6: डरो मत, गलती कभी कभी हो ही जाती है, और कानूनी गलती हो जाने पर एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। गुल्ला लीगल सर्विसेज, फाउंडर मिस्टर गुल के पास लॉ के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस है। वो आपको सलाह ही नहीं देंगे बल्कि आपकी सिचुएशन को समझेंगे भी। कॉल टुडे ऑन 0223530872 और विजिट gullaw.co.nz।
7: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेडशीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं, ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स माउंट रस्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स, 220 स्टोरार्ड रोड माउंट रस्किल। आसान, भरोसेमंद और 24/7।
8: Three boys, one girl, and this ultimate Saturday night. Spice up your Saturday night with the boys. With the boys. Saturday night hangama with DJ Shaleen, Mona, Satin, and Sonal.

0: के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
2: क्या हुआ मामा?
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे ही पूछ लो।

0: best of music, best of shows. This is Radio Tarana.
1: तुझ उस मोहब्बत है
2: बिल्कुल
1: तुझे उसकी जरूरत है

0: वतन से दूर आपको वतन की याद दिलाता है, आपको खुश करता है, आपका ख्याल रखता है, आपका फेवरेट, आपका साथी रेडियो तराना।
1: आप सुनने जा रहे हैं तराना पर डिवोशनल शो।
2: बिल्कुल, रेडियो तराना पर ये प्रोग्राम आपके लिए। मेरा नाम है संजेश नारायण। गुड मॉर्निंग, आज का मंगल प्रभात आपको बहुत बहुत बार शुभ हो। आज है फ्राइडे, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, 8 मई की सुबह आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज जुम्मा है, जुम्मा की मुबारकबादी आपको देते हुए चले प्रोग्राम शुरू करते हैं। एक अच्छा विचार सबसे पहले, किसी ने खूब कहा कि आज वही कल है, आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी, आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। इसी के साथ चले प्रोग्राम शुरू।

जया किशोरी अपने साथियों के साथ प्रोग्राम में शामिल हुई थी। अब की बार अनूप जलोटा, इनफैक्ट दो गाने अनूप जलोटा के आने वाले हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, कभी कभी भगवान को भी, फिर उसके बाद में जय जगदम्बे माँ। अनूप जलोटा को आप सुनेंगे।